0: ଯେଉଁ ଭକ୍ତି କର୍ମ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନୁହେଁ ତାହା ମୂଢ଼ ଏବଂ ନିରର୍ଥକ। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ, ସମୟ ସକାଳ 6ଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होगी। उन्होंने कहा कि यह विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉ जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन

0: मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान किया जाएगा। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। अमेरिका के मौसम विभाग ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तापमान का भी पूर्वानुमान होगा। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। वहीं जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। तीसरा मैच मंगलवार को नॉटिंघम में खेला जाएगा। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। वैभव ने 15 वर्ष और 99 दिन की उम्र में पदार्पण किया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। लंदन में विम्बलडन टेनिस टूर्नामेंट में बेल्जियम की एलिस मर्टेंस ने कल महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकहिना को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। एक अन्य मुकाबले में फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एला ने तीसरी वरीयता प्राप्त पोलैंड की ईगा स्वियाटेक को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने तीसरे दौर में अमरीका के मार्कोस गिरोन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी कटक।
2: अच्छा दासबाबु, आपणको घरटा 1970 रे तयार हितला राइट? हेले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि?
3: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सहीथि पई मु सेतेबेले मोर विश्वास रखितली एवं आजि मध्य चेटिनाड सिमेंट उपरे
4: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नुहे बरम पीढ़ी पाई रही थाए। चेटिनाड सिमेंट सुपर ग्रेड सिमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ। चेटिनाड सिमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: आरंभ करुछु भक्ति गीतर कार्यक्रम वंदना।
5: विश्व भुवनर आज एक ही रूप, आज सका आज उषा आज उदय रागरे एक अपूर्व मूर्छना। सब इंद्रियर द्वार आज खोली खोली मेली मेली हो जाऊ कि अनंत आड़ को क्षुद्र मनीष आज ये क्या भेटुची अंतरे और बाहर एका समय रे हृदय गुहा को किए से ओह्ल आसुचंती जीवन स्वामी हो त्राणकर्ता हो महासखा से करुणा सगर अगतिर गति किए से ओह्ल आसुचंती भूतल को अनंत महान उदार आकाश पथ दे अकूल अतल महापारावार हो महामहीधर हिमे हिमे हिमालय मध्य किए जे विश्वरूप दर्शन कराऊ भूलोक द्विलोक अंतरिक्ष घेरी आज सबकि सुधामय सबकि मधुमय।

0: ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ସମୟ ସକାଳ 6:00 ବାଜି 55 ମିନିଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସଂସ୍କୃତରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କିଛିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना ह्यः गुजरातस्य सानन्दक्षेत्रे सीजी सेमी संस्थायाः अत्याधुनिकस्य ओसेट सेमीकंडक्टर संयंत्रस्य उद्घाटनं कृतम्। अत्रावसरे जनसभां संबोधयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् अयं विकासः भारतस्य प्रगाढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स क्रान्तेः आगामी चरणमस्ति, येन देशः पूर्वमेव विश्वस्य द्वितीयः बृहत्तमः दूरभाष निर्मातृत्वेन समेधितः। सः दृढ़ विश्वासं प्रकटितवान् यत् सानन्दक्षेत्रं वैश्विक सेमीकंडक्टर केन्द्रत्वेन समेधिष्यते।
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर पावर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: तेन गदितं यत् सानन्दं प्रतिवर्षं 20 कोटि चिप्स निर्माणार्थं सज्जमस्ति। तेन 500 कोटि परिमितस्य लक्ष्य निर्धारणार्थं शुभाशयाः अपि प्रकटिताः। अत्रावसरे केन्द्रीय मन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन घोषितं यत् 26,000+ यावत् भारते 5 सेमीकंडक्टर संयंत्राणि पूर्णतः क्रियाशीलानि भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणा जोधपुर विमानपत्तने नूतनस्य टर्मिनल भवनस्यापि उद्घाटनं कृतम्। तदनन्तरं सः बालोत्तरा मण्डलस्य पचपदरा क्षेत्रे देशस्य अत्याधुनिकं ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इत्येतत् राष्ट्राय समर्पितवान्। अत्रान्तरे तेन जयपुर मेट्रो द्वितीय चरणस्य शिलान्यासोऽपि कृतः। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य संघर्षेण 21वीं शताब्द्याः महत्तमः ऊर्जा संकटः समुत्पन्नः, किन्तु भारतेन समयोचित निर्णयैः कूटनीत्या च एषः कालः सम्मुखीकृतः।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।

0: श्रीमोदी राजस्थान सर्वकारस्य विभिन्न विभागेषु नवनियुक्तेभ्यः चतुःपञ्चाशत्सहस्र युवभ्यः नियुक्ति पत्राणि अपि प्रायच्छत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः सानन्द क्षेत्रे नूतन सीजी सेमी ओसेट इत्यस्य उद्घाटनं प्राविधिक आत्मनिर्भरतायां भारतस्य अभिनव पदक्षेपः इत्युदीरितवान्। अस्य अत्याधुनिक संयंत्रस्य उद्घाटनं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना कृतम्। गृहमन्त्रिणा सामाजिक संजालीय तन्त्रे स्वलेखे प्रकटितं यत् भारतस्य प्रौद्योगिकी महाशक्तित्वेन विकास यात्रायामेषः कश्चन नूतनः कीर्तिस्तम्भः अस्ति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अद्य प्रभृति अस्य मासस्य दशदिनांकं यावत् कतार, बहरीन, कुवैत, ओमान देशानां आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। स्वप्रवासकाले विदेशमन्त्री तत्तद्देशीयानां समकक्ष नेतृभिः सह शीर्षनेतृत्वेन च सह मेलिष्यति। विदेशमन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् अयं प्रवासः एतैः देशैः सह भारतस्य द्विपक्षीय सम्बन्धानां दृढीकरणे विशेषेण केन्द्रितः भविष्यति। संसदः वर्षाकालीन सत्रमस्य मासस्य विंशति दिनांकात् अगस्त मासस्य त्रयोदश दिनांकं यावत् प्रचलिष्यति। संसदीय कार्यमन्त्री किरण रिजिजू सूचितवान् यत् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः जुलाई मासस्य विंशति दिनांकात् संसदः वर्षाकालीन सत्रस्य आह्वानाय सर्वकारस्य प्रस्तावं स्वीकृतवती। आईसीसी महिला विंशति प्रतिविंशति विश्वचषके लंडन नगरस्य लॉर्ड्स क्रीडांगणे इंग्लैंड दलम् अद्य अन्त्यद्वन्द्वे ऑस्ट्रेलिया दलम् सम्मुखीकरिष्यति। इयं प्रतिस्पर्धा तावत् भारतीय समयानुसारं रात्रौ अष्टवादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी कटक सुनंतु आज प्रचारित होगा कार्यक्रम संपर्क सूचना आमर स्वास्थ्य सका 17:10 रही विषय दात उठा समय समस्या ए संपर्क आलोचना कर डा मानस रंजन पाणी शिशु संचार सका 17:25 भजन ए शिशु संगीत आयुष एन प्रस्टिंग कंठरे गप कविता कहे ब्रजबिहारी सुबुद्धि श्यामप्रसाद मुखार्जी संपर्क कहे बटकृष्ण स्वई सकाळ 8:30 श्रीक्षेत्र माधुरीरे रहिछि पूजा पंडा सेवा संपर्करे आलोचना करिछन्ति रामचंद्र पूजा पंडा वैदेश विलासर 75 भाग सकाळ 8:45 मो पसंद सकाळ 9 दिन 10 प्रचार करिबो नाटक रतन बेहरा निरुथिष्ठ रचना श्रीजुक्त सत्यानंद श्रीजुक्त सत्यानाश प्रयोजना रवि शतपथी अभुलगित दिन 11:10 कंठशिल्पी निहार रंजन सुंदररा एवं गीता मंजरी बेहरा लोकसंगीत क्रम में प्रचार करिबो दासकाठा गीत दिन 11:30 कंठशिल्पी चक्रधर बारिक एवं साथीमानी मंजुल मध्यान श्रोता एसएमएस मध्यम हिंदी और ओडिया कथचित्र गीतर कार्यक्रम दिन 12 दिन 8:10 जोड़ी नगरा बात्य परेषण कर गोलक बिहारी दास एवं साथीमाने नारी महल दिन 8:20 अपराह 2:45 आपण चिठी अपराह 3 हिंदी कथचित्र गीतर कार्यक्रम पीपल्स पद्मन आकाशवाणी अपराह 3:10 असरंती अपराह 3:25 आकाशवाणी कृषि शिक्षा अपराह 4 एथिरे रहिछि आज आलोचना धान तळी रोइबा पद्धति ए संपर्क रे आलोचना करिछन्ति देवाशीष नायक चिरहरित अपराह 4:30 देशभक्ति गीत अपराह 4:55 स्मृतिर पहाच अपराह 5 एथिरे रहिछि अवसरप्राप्त संवाद पाठक एवं खेल भाष्यकार गोपाल चोट्रायंक सहित साक्षात्कार युवबणीरे संपर्क संध्या 5:30 गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरित मानसर अनुस्तरितम भाग संध्या 6:00

नमस्कार, आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती लहरिका पटनायक। राज्य में भोटर तालिकारे स्वतंत्र सघन संशोधन प्रक्रियारे परिगणना फर्म बंटन और संग्रह शेष होबा परे आज चिट्ठा भोटर तालिका प्रकाश पाइब। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरएस गोपालन एने भोटर तालिका पर्यवेक्षक एक समीक्षा बैठक करिसंति। भुवनेश्वर में आयोजित बैठक में श्री गोपालन जणे भी योग्य मतदाता तालिकारु बाद न पड़िबा पई ठिक समावेशी और त्रुटिमुक्त तालिका सुनिश्चित करने को गुरुत्व देथिले। सूचना अनुसार राज्य सरकार 10 जन वरिष्ठ आईएएस को विभिन्न जिला भोटर तालिका पर्यवेक्षक भाव निजुक्ति देछंती। जुलाई 5 तारीख अगस्त 4 तारीख पर्यंत एथसंबंधीय दाबी और आपत्ति ग्रहण करसबुर जांच और फैसला अगस्त 4 तारीख सेप्टेम्बर 2 तारीख मध्य शेष होगा। सेप्टेम्बर 6 तारीख चूड़ान्त भोटर तालिका प्रकाश कर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आसंता 9 तारीख दिनिकिया ओडिशा गस्तरे आसिबार कार्यसूची रही। गस्तक सफल और सुचारू रूपे संपन्न करने लागि मुख्य शासन सचिव अनु गर्ग अध्यक्षतारे प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित होई। सूचना अनुसार उपराष्ट्रपति 9 तारीख भुवनेश्वर कृषि शिक्षा सदनठारे गभीर समुद्र में मत्स्य संपदर स्थायी उपयोग लेटर अफ अथराइजेसन जातीय कार्यक्रम को शुभारंभ करिबे। उपराष्ट्रपति खोर्धास्थित जातीय विज्ञान शिक्षा गवेषणा संस्थान नाइजर रो 25वां समावर्तन उत्सव में मुख्य अतिथि भाव जोगदेवार कार्यक्रम रही। पुरी में आसंता 16 तारीख होगा महाप्रभु श्रीजगन्नाथ विश्वप्रसिद्ध रथयात्रे जोगदेवा लागि राज्यर समस्त पद्म पुरस्कार विजेता मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी चिठी लिखि निमंत्रण करिसंती। समस्ते एकाठी हो राज्यर समृद्धि और राज्यवासी कल्याण पर महाप्रभु को प्रार्थना करिबा बोली मुख्यमंत्री चिठी में उल्लेख करिसंती। पंचसखा शिक्षा सेतु संगठनर चतुर्थ कार्यनिर्वाही परिषद बैठक अनुष्ठित होई। बैठक में 23 जिल्लार विभिन्न विद्यालय भित्तिभूमि विकास पाई 7 कोटी 29 लक्ष टंकार विभिन्न प्रकल्प को मंजूरी दिया जाई। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा देवगढ़ गस्तरे आसी सुभद्रा शक्ति विजन सम्मेलनी शुभारंभ करिथिले। गस्त अवसर में जिल्लापालंक विकास भवन सम्मेलनी कक्ष में प्रशासनिक अधिकारी मानकु नै एक समीक्षा बैठक अनुष्ठित होइथिला। प्रत्येक योग्य हिताधिकारी निकटरे सरकारी योजनार सुफल पहुंचिबा आवश्यक बोली उपमुख्यमंत्री गुरुत्वारोप करिथिले। राज्य सरकार निर्देश क्रमे खोर्धा जिले में महाप्रभु श्रीजगन्नाथ विजय पुरी नाम मार्फतदार नाम रेकर्डभुक्त जमीर रेकर्ड अफ रईट संशोधन कार्य सफलतार आगे। खोर्धा जिलापा पक्ष राजस्व और विपर्य परिचालना विभाग को ए संक्रांत तथ्य प्रदान कर। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित ओडिशा शिक्षक योग्यता परीक्षा ओटीईटी आज अनुष्ठित। राज्यर समस्त जिले में

0: सुबिला झांज खोल कीर्तन जय श्री जगन्नाथ सुबिला झांज खोल कीर्तन जय श्री जगन्नाथ रथरे दियो दर्शन कले कोटि जन्म पुण्य मिले रथरे दियो दर्शन कले कोटि जन्म पुण्य मिले पवित्र हुए आखि केते दूररु भक्त आसंती चका आखि को देखि केते दूररु भक्त आसंती चका आखि को देखि हातरे सुना खड़िका धरी आसंती झाड़ू दार टेपरी हातरे सुना खड़िका धरी आसंती झाड़ू दार टेपरी चढ़िकी पाट हाथी छेरा पहरा करती निजे उत्कल गजपति छेरा पहरा करती निजे उत्कल गजपति बड़दाण्डरे गड़िला रथ दौड़ी धरी टाणिले भक्त बड़दाण्डरे गड़िला रथ दौड़ी धरी टाणिले भक्त बड़दाण्डरे गड़िला रथ दौड़ी धरी टाणिले भक्त पकई हरि बोल भक्त सहित भगवान संपर्क केते भल खुशी रे महाप्रसाद खाई पूरी बुलिबा चल पकाओ हरि बोल रे पिले पकाओ हरि बोल
1: हो पिले ठाकुरंक पाखरे तम मानंकर मंगल कामना करी आजिर शिशु संसारकु एठी रखी उठुछु पूर्णि अपेक्षा करितिबो आगामी रविवारको।

0: ଶେଷ ହେଲା ଶିଶୁ ସଂସାର।
1: ଆଚ୍ଛା ଦାସବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା 1970ରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ରାଇଟ? ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କେମିତି ଅଛି?
2: ଆରେ ଏଇଟା ଏକଦମ ସିମ୍ପଲ, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲି, ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚେଟିନାଡ ସିମେଣ୍ଟ ଉପରେ।
3: ଶକ୍ତି ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ନୁହେଁ ବରଂ ପିଢି ପାଇ ରହିଥାଏ। ଚେଟିନାଡ ସିମେଣ୍ଟ ସୁପର ଗ୍ରେଡ ସିମେଣ୍ଟ, 64 ବର୍ଷର ଦୃଢ ମୂଳ ଦୁଆ। ଚେଟିନାଡ ସିମେଣ୍ଟ, ଦ ପରଫେକ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ ଚଏସ।
4: मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है, और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर माँ भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया, तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं, उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।
5: जीएसटी काउंसिल कमर्शियल बिजनेस रे टैक्स को आहुरी सरल करि देला। ए पर्यंत होटल रूम उपरे जीएसटी रो 4 दर लागुची। 1000 टंका रु कम दर युक्त होटल रूम उपरे 0% जीएसटी अछि। जेतेबेले कि 1000 टंका रु 2469 टंका मध्यरे थिबा होटल रूम उपरे 12% जीएसटी लागुथिला, एवं 2500 रु 7469 टंका रो होटल रूम उपरे 18% टैक्स लागुची। आउ एहाठारु अधिक दाम रो होटल रूम उपरे 28% जीएसटी लागुथिला, किंतु एबेठारु होटल रूम उपरे केवल 2 दर लागू हेबो। 7500 रु कम दाम रो रूम हेले 5%, आउ अधिक दाम थिले 12% जीएसटी देबाकु पडिबो।

0: ଜିଏସ୍ଟି କାଉନ୍ସିଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ଆହୁରି ସରଳ କରିଦେଇଛି। ସରକାର ସିମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଜିଏସ୍ଟି ଦର 28%ରୁ ହ୍ରାସ କରି 18% କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ୟାକ୍ସ ହ୍ରାସ ଦ୍ୱାରା ଘରୋଇ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଚାପ କମ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହିପରି ମାର୍ବଲ ଏବଂ ଟ୍ରାବୋଟିନ୍ ବ୍ଲକ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସର ଦର 12%ରୁ ହ୍ରାସ କରି 5% କରିଦିଆଯାଇଛି, ଯେବେକି ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ବ୍ଲକ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ 12% ତୁଳନାରେ ଏବେ କେବଳ 5% ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗିବ। ଏହା ସହିତ ବାଲି, ଚୂନର ଇଟା ଓ ପଥର କାମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାକ୍ସର ଦର 12%ରୁ ହ୍ରାସ କରି 5% କରିଦିଆଯାଇଛି।
1: ଶ୍ରୋତାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି 308.6 meter ତଥା 972 kHz ଯୋଗେ। ଏହି ପ୍ରସାରଣ ଡିଟିଏସ୍ ଏବଂ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଆପ୍ ଯୋଗେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାରିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କିଛିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रूपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
3: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
2: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
4: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहां पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहां पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
2: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
3: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक

0: इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
2: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
3: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए, वो दूसरी बात है। 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
1: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
4: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम

0: शंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
1: मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है।

0: भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: ये परिचर्चा आकाशवाणी एफएम गोल्ड और 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आज सवेरे 10:30 बजे से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कला संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटे की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिक्स ने कहा है कि लगातार 2 भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसस सिटी में कल कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 में पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश बना, 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने होर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा, ईरान अमरीका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है, 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी, राम मंदिर था निशाने पर, भारत में आतंकी हमलों तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे निस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट, तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है। साथ ही कुछ कंपेटेबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे, ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों

की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अपा
1: हाँ?
0: देखो
1: हैप्पी बर्थडे भाई
0: देखा वाह मोरो फेवरेट कलर
2: सबु बेले शॉपिंग
0: आई नो मा खर्च करिवार वयस एटा राइट
3: सेविंग करिवार भी वयस एटा
4: आई नो बापा सेव कर उचित जगह रे निवेश कर मूलधन ऊपर सुध मिलिबो जहा को पूर्ण थरे विनियोग करले सुध मिलि चालिथिबो
5: आई नो ना
4: आरबीआई कहे
6: कर सती आरंभ हुओ फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: नमस्कार श्रोता बंधु आपणंकर आमर आम समस्तंकर प्रिय कार्यक्रम
8: मो पसंद को आपण माननकु स्वागत करूछु
7: मो नमिता
8: आउ मो जस्मिन
7: तुमे मोर राती तुमे मोर दिन जीवन डंगारा तुमे नाउरी तुमे मोर गति तुमे मोर मुक्ति प्रतिटि स्पंदन अटे तुमरे
8: पाखरे थाओ कि थाओ तुमे दूरे सबु बेले लाग अच्छा पाखरे आखिरे थाओ कि थाओ तुमे मने डाको सुनु थाओ तुमे ठाकुरे

0: कम सुधारे लोन दरकार ताबी आपरे
1: बाहा अजणा आपठारु दूरेइ रुहन्तु
2: आरबीआई कहे
1: सचेतन हुअन्तु सतर्क रुहन्तु
3: लेखि पठाइले मन कथा मोर ए सम्पर्कर सूत्र
4: भाबी बनी मात्र चिठी टिए साथी ए प्रीतिपूर्ण पत्र
3: लेखिछन्ति नरेन्द्र महाकुड बस्तेपुर भद्रकरु मु आकाशवाणी पाँच वर्ष कि दश वर्ष नुहे एबे मते पुरिला नबे वर्ष ए बयसरे बि थकि पडि नाही कि नई जाई नाही मुंड टेकि सगर्भे दण्डाय मन ना अछि मोठरे बाल्यर चपलता ना अछि वृद्धावस्थार स्थानत्व बरं अंगे अंगे मोर तारुण्यर दीप्ति
4: जौवनर उद्यमतारे उद्दीपित मोर समस्त अवयव
3: शरीरें मोर असीम धैर्य साहस और मनोबल समस्त बाधाविघ्न हार मानी मो पाखे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय मंत्रे अभिमंत्रित मु
4: भूली नहीं मोर पथ पासरी जाइनी मोर संकल्प दुविधा प्रकाश करिनी सठिक तथ्य प्रदान करिपारी उपयुक्त मार्ग प्रदर्शन
3: कुंठाबोध करिनी कार्यक्रम प्रसारण रे अपरकु आनंद देबारे
4: सूचना शिक्षा और मनोरंजन रो साजिछि मो बलिष्ठ माध्यम
3: जहाकु साथी करी अतिक्रम करि चलिछि मो पहाच परे पहाच
4: मोरई चलापथे जीव माने हात धरी चालिछंती पाट देइछंती अमाप स्नेह असरंती प्रेम अकुंठित भल पाइबा
3: स्थान देइछंती तांकर विशाल हृदय रे बांधि रखिछंती ममतार रज्जुरे संपर्कर डोरी रे सेमानंकु मोर कोटी प्रणाम
4: सेमानंकु मोर कोटी प्रणाम।

0: ये कौन सा?
1: नहीं खुशी ले दो जी, सिगरेट खाई वो।
0: मो सर सिगरेट खाए नहीं।
1: खाओ नहीं
0: ना।
1: मिठाई खाई दो।
0: नहीं सर मैंने सर
1: जा।
0: हो जाओ सर। सर पेपर टा रखे सर?
1: हाँ
0: हो सर। रॉयल सर, सर नमस्कार।
1: हाँ नमस्कार नमस्कार।
2: जा हो गोटे भल संवाद मिलीगला। रत्ना बेहेरा चिप्टा नाक मुंड टिकिए चंदा धड़ा पंजाबी।

0: नमस्कार।
1: जा हौ, गोटे भल संवाद मिलीगला। रतना बेहेरा, चेप्टा नाक, मुंड टिकिए चंदा, धड़ा पंजाबी,
2: लक्ष टंका।

0: मु तते दी केजी मांसर पैसा दे देबी हला अने ये ध 100 रुपया और 80 रुपया मु पछर दे देबे हला
1: ए न न न नहीं हबेला साहब आपसे सिर्फ तो हम 100 रुपया लेगा हां
0: ए सुन सुन
1: फिर क्या हो गया
0: सुन तू रत्नावेरा को ताले चिन्ही छ हां
1: भल्ला करी चिन्ही छ अच्छी तरह से चिन्ही छ
0: अच्छा सुन ताको कोठी देखिले अबे सुन छु ना नहीं
1: सुन छी
0: ताको कोठी देखिले का को किछि न कहि कि मो पाख को संगे संगे खबर पठाई दबो
2: क्यों क्यों साहब क्यों अबे ताने रे वारंट अच्छी क्यों
0: सुन ताकू धरे देले मु तत्ते 10,000 टंका देबी
1: क्या
0: 10,000
1: 10,000
0: हां हां 10,000 मन रहला को
1: रत्ना बेरा को पकड़ी देले पूरा 10,000
2: पूरा
3: 10,000 में मैं भाई पूरा पूरी लखे लखे
4: ए हाथ तो कोड़ी चुप चुप ये मिया भाई कौन कहुथिलु कौन कहुथिलु कौन हला
2: कौन
4: हला कौन लखे लखे होतलु बेटे कौन कहुथिलु कौन
3: रत्ना बेरा को धरे देले लखे टका नुआ गोबि नाही ओ कहि देल तो
1: एक लाख रुपया
4: हेरे तोते बारंबार मना कली तो दी कानर तीन कान कर ना हेले तो पार्टी रे कोन नूळ मिलौची हेरे
1: रत्ना बेरा को धरे देले एक लाख रुपया मिलेगा मुझको 10,000 रुपया कहिला
3: देखिलु गोविंद आई देखिलु कथाटा दी कानर 10 कान हे गेलानी मु कोन भूल कली कहिलु
1: तम संगरे मते शामिल कर लियो म देखो 10,000 मेरे लिए काफी अच्छी हां जूता दुकान बताऊंगा
3: नहीं नहीं भाई नहीं नहीं नहीं तीन जन हेले अशुभ शास्त्र कहि छी
1: हां तीन जन अशुभ हां अशुभ क्या है भाई हां तुम्हारा जगन्नाथ तीन लोक अछि बलभद्र सुभद्रा हैं जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा तीन लोक नहीं
3: आ तो ना कौन
1: अरे राम लक्ष्मण सीता तीन लोक है
3: अरे रख राम लक्ष्मण तो ना कौन
1: अरे मेरा नाम तलाश का मैं रत्ना बेरा को पहचानता हूँ भाई हाँ याद रखो
4: ताले तू रत्ना बेरा को जानी चुनो हाँ ठीक अच्छी मिया भाई ताले तू ये आज ठारु रत्ना अनुसंधान पार्टी रे मिसी गलु वाली बात है
1: अच्छा भाई
4: कौन है ला
1: ये सब रुपया कहाँ मिलेगा
3: बुझिलु मिया भाई हमें माछ दबु पछे हेले गाड़िया देखेबुनु
1: मैं सोचता हूँ कि जो पता लिखा है
4: हाँ।
1: वहाँ से 2,00,000 रुपया अगर चोरी करके ले आऊं तो
3: ओ कोयला कौन है 2,00,000 रुपया चोरी करके ले आऊंगी तो
1: हाँ।
3: या तो चोर क्यों करो अरे टोंका पाई चोरी करी
1: अरे अरे अरे अरे अरे हम कौन कहूँ टिके मकथक भी भाव हमसे पहले जदी से हबीलदार का बच्चा है रत्ना को पकड़ लिया तो हमें क्या पाई
3: छेना गुड़ो सत्य तो गोविंद आई
4: ये तो लाजमिया ठीक कहू रे हाथ कड़ी
3: ताले कौन करवा बे
4: चोरी चोरी करवा चोरी
3: नहीं भाई नहीं नहीं नहीं नहीं गोविंद आई मु चोरी करी नहीं धरा पड़ी ना से हबीलदार चोप्पा छड़े दबो चोप्पा
1: चोप्पा छड़े दबो अरे मैं चोरी करूंगा भाई सिर्फ तुम दोनों मेरा पास खाली खड़े रहना
4: ठीक अच्छे सुन काली नुह पहर दिन जीवा समस्ते मेल हवा ठीक 4 बेले बाहर चल हाथ कोड़ी चल
3: चल गोविंद चल चल
5: मानसिको प्रेमलता तमरण जन्म को देखिले तमे भारी मने पड़ो प्रिय जह्न देखि मने पड़े जह्नि जह्नि मंजीरे तमरो मुह जल जल दिसि जाय हाय
6: हेटी तमे मते सतरे नाव करचो ना
5: माने माने तमे मते डाउट करचो प्रियतमा प्रेमलते मो लव पूरा पूरी 24 कैरेट हां
6: नाही डाउट नाही जे
5: जानिचो तम लव रे पडिला दिनु मते चारियाड खाली प्रेमलता प्रेमलता प्रेमलता मय दुसछि भीम भोई को अलेख भजन माडिला भलिया मते खाली कविता कविता माडुछि सुनिबो तम आखि आईना रे
6: एत बड़ आईना गोटे कि

0: ए जा लक्षे दि लक्ष जोगाड़ कर तापरे हनीमून र
1: टंका कोट पाइबी लक्षे टंका कोट।

0: पाइरा काई
1: कुंजुजी सर भाबुजी निश्चय पाइबि पाइबार क्षणी आपन को देबि ता खबर ता परे आपन पाइ जिवे लखे आ मोर होइबे ससुर हाय प्रेमलते
0: चाप चाप रत्ना बेहरा को पाइबा पूर्वरु प्रेम संगे राउ केबे नरे नरे हबार देखिले तो सीधा भितर पुरे दे बुझिलो प्रेम ए तो सास त कम नुए अरे बाघ न थले मिरी गो नाट नहीं
2: नाई डाडी मु केबे आसुनतली कहली नाई जीबिनी डाडी मना कर जंदी
0: अच्छा
2: प्रेमनाथ मत हाथ ठारी डाकिले हमरा कहले आस किछ अपन डाडी किछ कहबेनी डाडी कहि जंदी
0: हेमंत
1: ना ए सब मिथ्या कथा सर
0: मिच्छा मिच्छा मु तते 420 दफारे घणा पेलेबी हई पम हई जाउचना देखिबो इने मो विश्वरूप जा मना तीन थर को धर्म छाड़ बुझिलो तू आउरी जाइनु
2: पृथ्वी
1: रु सत्यटा पूरा पूरी उठी चली गला ना कौन चाहू चाहू बोपा आगे ढा मिछ उड़ा को केमती गायब देगला देखुन कौ दिन आउ कौ न करथिबा कथा कहि बदनाम न करियो बोली किए कहबो अरे बा चमत्कार कविता गोटे हबो एटा प्रियतमा प्रेमलता धोका देई चली गलो डाडिंग को सांगरे मु तमकु केते भलो पाए हाय सत कि निर्दय तमे हाय तम स्मृति करे मो मन को अधीर हाय
3: कंट्रोल चीनी किरासिनी गहम आसी जाई निज निज कार देखाई डीलर मानक ठारु चीनी किरासिनी गहम आनो हे
1: अरे भाई डेंगुरा वाला याटे सुनलु सुनलु
3: मोते डाकिला आ
1: हां आईडी आईडी आ
3: अरे कोन हेला कि बाबू
1: ये डेंगुराटा कोन गिरे
3: आगे कंट्रोल चीनी किरासिनी गहम आसी जाई छी
1: हां
3: कार नै कि निज निज डीलर को ठु जिनिस आनियो बोली डेंगुरा पिटु छी
1: ये डेंगुरा वाला भाई
3: आज्ञा
1: पाखुट के आइलु
3: आज्ञा
1: अच्छा ये जो डेंगुरा पिटिया को तो केते टंका नउछ
3: ये 10-12 टंका आज्ञा
1: मोर गोटा डेंगुरा दवार अछि
3: हां काई की देबिनी बाबू ये डेंगुरा बडाई मु परा पीला कुटुंब पशु छी
1: अच्छा हाओ तुमो सांगरे से गछमळ उचालेटी खराटा होछ त कोन डेंगुरा दबु मु तते कहि देबे आ आ
3: भाई माने सुनो सुनो सुनो तंटी कटा डकैत रतना बेहरा पुलिस आखेरे धूली दई जेल खानारु खसी पळई जाईची रंग साबना मुंड टिकिया चंदा चेप्टा नाक गला बळ को धळा चूड़ीदार पंजाबी पिंदी थेला ताकू जिए जियंता अबा मरंता धरई दबो लक्ष टंका पुरस्कार पाइबो हे
4: जियंता अबा मरंता मरी गलु रे रतना बेहरा मरी गलु छी छी छी छी अरे मिछरे ए दुर्बुद्धि काहे की करूतिलि रे छी छी छी छी छी अरे पेपर रे फोटो बाहर नथिले को प्रेस्टीज रा पळुथला कहिलु कोन करबी बे हे भगवान कोठी मुलुची भी एमान मते तंटिकटा डकेई तो करि देले कोन करबी रे पापा ए गोटा ए गोली बाजिले प्राणटा अकरण ठो करि चली जीव कोन करबी मु
1: देखा हेले रतना बेहरा एमिति ताकु मिछ पिस्तल देखैबि ढुकैबि नै मामू घरे
4: तमे रतना बेहरा को चिन्हिछ कि भाई
1: ना किंतु जाने मुंड चंदा चेप्टा नाक धळा चूड़ीदार हाबुड़े पड़िले मोर रक्षा नाही तार
4: ओहो गोटे ग्रह गला बंची गला मनीष कोउ मुहूर्त रे प्राणटा जे चली जीव तार ठिकणा नाही रे बाबा तार ठिकणा नाही
5: आम रतना रे भी सेमती ठिकणा नाही आज्ञा जणे बाबू कहुथले से कुआडे मरी जाई मोर विश्वास हौ नै
4: विश्वास हौ नै काई कि विश्वास हौ नै तो भणजा कोन अमरवर पाइ छि रे बुढ़ा
5: तमे तो बाबू।

0: मु सतुरा विश्वाल
1: सतुरा विश्वाल
0: हां
1: से दिन त तमे तमो ना शंकर महंती कहुतिलो आज्ञा
0: अरे इटा त मने रखिछि हां हां हां जे मु कोर्ट रे मो नाटक बदलि दिछि परा
1: भला भला
0: हां
1: शंकर ट जमर भल ना नुए सतरु सतुरा चमत्कार तमे एकदम सत कथा कहुतिबा बाबू
0: यस यस खांटी सत कौन एथर तोर बोतल स्टार्ट कि रही
1: गोटे पीच गोटे धरिकी आनी हेले बाबू आज कल भल माल मोटे आसुनी देख गोटे पीले जे पीला भलिया मोटे लगुनी
0: तू सला के मत लुचि लुचि पी पी उस्ताद ही सारे ना
1: मत किसी कहले कि बाबू
0: नहीं मुझे कहती कि तो भणजात मरीगला सी तोर टिके भी मन पड़ुनि रे बुढ़ा
1: पड़ुची आज्ञा बहुत मन पड़ुची ताकु धरई देले सरकार लक्ष टंका देबे बोली डेंगुरा पिटुछंति परा सी मला तो मला घरे हेले मरी थांदा
0: आउ जी थेले
1: जी थिला बेले ताकु थाना को नेबा बड़ काठीगर पाठो भारी दूर तो आजा हो सोई थिला बेले टांगियार दी गण कर थांती तापरे थाना को नहीं लक्ष टका पाई था छड़ो आजा मो भाग्य तो नाई हो जाऊ छे आजा निशाटा टिके धरि आसला हां
0: हां जा जा जा
1: जाऊ छे
0: हां जा जा
1: नमस्कार आजा
0: हां नमस्कार नमस्कार अरे एटा तो कनसर्ट बढ़ी गला हौ रे पु तू जा मु घर को गले आगो तत्ते जदि दी गड़ न करिछि ताले कहिबु मु अण बाबू आपुला
2: हे को नै आसे नाटा करमो
3: तू बण भालु रे ए गुटै ना तोर मन रोमे आ लक्ष्य टुके पछि गोड़ैछु
4: ए सुन मन रख सपना बेरा
2: हाँ सपना बेरा
4: हाँ सपनाई सपनाई ए सपनाई
1: क्या बोले रात्रि रे रोड़ी चढ़ी कहीं के
5: सपना भाई ओ सपना भाई
1: ये बार रोक के ही देवे नहीं
5: अच्छा
1: ये जाओ ची
2: मिया भाई तू रेडी था
1: क्या बोले
4: नमस्कार सपना उषा नमस्कार नमस्कार
1: नमस्कार तम कैसे बाबा तमक तो मोटे चिन्ह पारे
5: मऊसा आगुरु तो आमको देखिन नहीं कथा कण कि आम रतनार सांग
1: रतनार सांग भल भल रतन तो घरे नाई बापा
4: घरे नाई कुआर जाइछ मऊसा
1: कौन जाइछ जड़े बाबू कहते रतन कौटे मरीगला
2: मर गया साला
4: अरे मरीगला तो आम कौन करवा गोविंद भाई
5: मऊसा आम तुमको गोटे कथा पचारंतु
4: तमें से लक्ष टा कौटी रखीच मऊसा
5: हत कोड़ी
4: ओ ना नहीं कौटी रखिन रखिन
5: मऊसा ये पेपर बाहर था जे रतना को खोजी आनले तमें कड़े लक्ष टा दब बोली
1: लक्ष टा मुठ पाइबि लक्ष टा से शाला रतना कौट रखी तब ना
4: रतना कौन तब शा मऊसा
1: नहीं नहीं से मोर पेटर भणजा पेटर मामू
5: ताले तो तमे आमर मामू अच्छा मामू सत कहिल से लक्ष टका कोठी रखिछ
2: साला बुटा मिछ कथा कहुची मिछ कथा
4: सतक टका कोठी रखिछु नहले बोतल अरे खेली जबर धरछु छाडु जी ना
1: मो टका रखिनी बापा
4: छाड छाड बोतल
1: अरे अरे अरे मो बोतल तु न होछु काई
5: मैं भल गति अछि त कहि दे से टंका कोट रखिछु
2: टंका हां कोछु कोछु हां ए सुनो अरे घरे सिंतु करे सबु नि अब छे बाबा मो बोतल त दे दे मो बोतल
5: चाबी चाबी काई
2: ए ए ने ने ने

0: Calme-a, bé. Se et sinduc et guibachal.
1: हवेलदार झटपट सिंह बोलता है घर भीतर किए कि अच्छा शीघ्र बाहर आस नाले आपो शूटिंग कर देबे
2: तीन जने चोर सर जने मते हाड़ी दे दे हाड़ी
1: के जने तीन जण अच्छा अच्छा ठीक छे ए ए ए अरे घर भीतर बाहर चना नहीं नाले खिना पिस्तल ले तम मुंड को सम्मान छत्तू कर देबे
2: पिस्तल कहीं सर आई एड़ा तो बाड़ी चम चम
1: चम चम हाँ बाल्लो नारे चलेली गुड़ी रेडी एक दो मैं बिभाम मैं दो दो
0: पता भी बाहर ना थी
1: ये साढ़े दो
2: नहीं सर नहीं सर हमें चोरन हुए सर हमें चोरन हुए सर
1: चोरन हुआ चोरन हुआ आओ कौन कुनिया हैं टेक टेक टेक खाता टेक खाता टेक खाता टेक
2: खाता टेक खाता टेक खाता एक बार माफी कर दिया हवेलदार साहब एक बार माफी कर दिया
1: यहाँ पर ये तू खलास में है तू यहाँ भीतर पसुचो
2: आगे पुलिस बाबू यही यही मते लखनऊ का वाया मून आई कोई बाबू मते हैंडी तो बाबू बस्तला सा रे
1: अच्छा मोसंगरे गद्दारी यहाँ पर तुम तत्त्व जो दी घना ना पहले ची ताले मोना मशहूर हवेलदार झटपट सिंह नुए
3: सिंधु करता लखनऊ का नहीं है क्या हमें कत्ता बड़ा चोरी कर लू
1: तू नंबर वन यही तरह
2: यही तरह क्या मार कर रही हूँ तू जा रहे यही तरह क्या मार कर रही हूँ
1: चोरों को आगे मारो पछे बिचारा चलो चलो तीन जन जाकर से घर को चलो जो घर वार थलो सही घर को चलो
4: प्राणोता चाली जवाहर गुरु थाना भी तेरे पोसी गले जगे रखिया नहले मो पछिर जो गोइंदा लागी गलेनी ना गोटाए ढूस रे मु एकदम खुश हे आगोटा तो थाना हो थाना थाना हो जथा शीघ्र से भीतर पसी जिवार अछि जाय पसी जाय जाय पसी जाय
1: गद्दारी नहीं मो दाना रे झुड़ी देख देख कुछ ये रोलो ठंगणी तो झोड़ो हार कर
4: दे मते मते छोड़ दो मते हबीलदार बाबू मते मते छोड़ दो रत्ना बेरा को मु पकड़ी करी निश्चय ले आसी
1: तते मु आगे पकड़ी खुएबी या प निम खराम ये से कि कि कि का गला ए बे ए ए ए ए ए ए ससुर घर वलिया सीधा सीधा थाना भीतर कौन पहुंच जाऊ छु बे अबे चिन्ह छु मते मशहूर हवेलदार झटपट सिंह मो बिना परमिशन रे थाना भीतर कौन पस जाऊ छु बे ए यड़ा अबे तू तू हां यड़ा यड़ा यड़ा या प मु न थेले नहीं थिला बड़े मन इच्छा शासन अबे कोई करत ते ए यड़ा
4: आ गया सर
1: हां बे सर नॉनसेंस थाना भीतर तोर की काम
4: काम काम काम हो छि सर काम
1: वाट
5: आ गया ताकू थाना को नियंतु हाव हम को छाड़ी दियंतु सर
4: आ गया मु रत्ना बेहरा
5: रत्ना बेहरा
1: तू रत्ना बेहरा ए सावधान सावधान तमे तीन जन जाक हलचल लेले ताकू छोटा कर दे चुपचाप छिड़ाओ
4: आ गया मु रत्ना बेहरा नुह शंकर महंती रत्ना बेहरा विषय रे कहबे को आसी छि
1: रत्ना बेहरा कोठी अच्छी तू जानी छू
4: हां
1: कोठी अच्छी
4: मु कहबी नहीं मु थाना बाबू को कहबी
1: अबे अबे मु थाना बाबू जहां कहिया कथा मत कह
4: नहीं मु कहबी नहीं ना कहबी
1: नहीं नहीं देख देख एई जिद्दी जगु मोर खाली पिट्टीवा को इच्छा हुए
4: टक
1: टक टक सुन सुन सुन मते कहिले मु तते 50,000 टंका देबे
4: हबिलदार बाबू अरे ये केमतिया कथा अच्छी मते पर 10,000 तो बोली कहितला
1: चुप चुप कौन राजी
4: नहीं मु तुमको कहबी नहीं
1: कहबोनो
4: नहीं
1: कहबोनो
4: नहीं
1: तो बप्पा जी से कहबा बे बड़गला पिस्तल हैं।

लगता नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ओडीएफ से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती की सेवा के लिए वापस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

0: great choice.
1: QR code scan karantu 5000 ro cashback paantu bah aji badhiya dino fasila
2: UPI pin entering kebal tauka patheba pai udishta
3: RBI kahe
4: sachetana huantu satark ruantu
5: कस्टमर केयर तरफ फोन आसीथिला कहुथिले तमरा 50000 रिवार्ड पॉइंट्स एक्सपायर हेइजिवो ए लिंक परथि एपीके डाउनलोड करिनियंतु
6: ठीक लागुनी स्कैम भी हेइ पारे एपीके

अनुराधा पौडवालको कण्ठले सुनन्तु परवर्ती गीत कथाचित्र कन्यादान। तेबे अनुरोधकारी श्रोता हेले सेक्टर 11 CDA कटकरु उर्मिला निर्मला प्रत्युष एवं प्रभाकर।

0: ମଞ୍ଜୁଳ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଶୁଣିଲେ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ କଥା ଚିତ୍ରର ଗୀତ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ଜରିଆରେ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ ଗୋଟାଏ ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୀରେ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମୈଁ ମୁନୀଷ ଶର୍ମା। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियों को हटा लिया है। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें यह दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में भी महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिक्स महिला ट्रैक ने 4 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह वैश्विक संवाद एआई के अंतर्राष्ट्रीय संचालन को आगे बढ़ाने का अनूठा अवसर है जो अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और बहुहितधारक प्रयासों का पूरक है। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला

0: स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दी। महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतकर्ताओं में से एक बना दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। The government has issued a stern notice to Meta on child sexual exploitative and abuse material seen in paid ads on social networking site Instagram. Official sources said government has ordered Instagram to disable all ads and content promoting and facilitating access to CSEM. Ministry of Electronics and IT has demanded a detailed explanation from Meta within 7 days. Earlier, the ministry had taken cognizance of reports that Instagram showcased certain objectionable material that promoted child sexual abuse and issued directions to officials to seek a response from Meta. Government has withdrawn the emergency curbs on natural gas supplies after liquefied natural gas LNG shipments through the Strait of Hormuz resumed following a ceasefire in the West Asia conflict. In a notification, Ministry of Petroleum and Natural Gas said the Natural Gas Supply Regulation Order 2026 has been amended, removing key emergency provisions that had allowed the government to prioritize the allocation of domestically produced natural gas and imported LNG. The emergency order was issued in March this year under the Essential Commodities Act. Union Minister of Rural Development Shivraj Singh Chauhan has expressed happiness that Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VBG Ramji Act 2025 has successfully come into force on the 1st of this month. The minister today sanctioned and released assistance of 25,000 crore rupees to the states under the mission through video conferencing. Mr. Chauhan said, under this act, over 7.5 lakh crore rupees will be invested in 2.86 lakh panchayats in the next 5 years to accelerate the vision of Viksit Bharat. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will be on an official visit to Qatar, Bahrain, Kuwait and Oman from today till the 10th of this month. During the visit to these countries, Dr. Jayashankar will be meeting with his counterparts and the leadership. Ministry of External Affairs said the visit will focus on enhancing India's bilateral relations with the countries and also provide an opportunity to exchange views on regional developments and issues of mutual interest. Prime Minister Narendra Modi's visit to Indonesia beginning tomorrow will give impetus to the existing relationship between both the countries and will also open up new areas of cooperation. In an interview to Akashvani in Jakarta today, Mr. Sandeepan Chakravarti, Indian ambassador to Indonesia, said that during Mr. Modi's visit to Indonesia from the 6th to the 8th of this month, there will be several new areas of cooperation that will open up between the two countries. Renowned Pandwani singer of Chhattisgarh and Padma Vibhushan awardee Tejan Bhai.

0: ए चिट्ठी चिट्ठी।
1: आलो ए सावित्री खुड़ी, चिट्ठी आई परा, आलो सुनु।
2: ए हे शंकर भाई, ए आसा आसा, ए डाको थोड़ी परा खास तो मोरी।

0: पढ़िला तू पढ़िलुनी तते किए मना गला बा
1: मु कहली बो पढ़िबी पाठ श्रेणी रे होइबी उत्तम छात्र तू कहिलु
0: मोरुनु पोडा मुही घर पाइति रे पर माइकिना झिया सारा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजनबाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
1: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें यह दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ VBG रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन

0: कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: श्री चौहान ने कहा कि वीबीजी रामजी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे, जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रम्बानन मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
3: The significance is immense.
2: भारत और इंडोनेशिया का संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
3: ग्रेटर इकोनॉमिक एंगेजमेंट बिटवीन दिस टू लार्ज कंट्रीज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
4: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस

0: की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत के मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। दो दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। ये सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
2: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
3: दोनों जने मिलके सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं।
4: अच्छा, जे जान पड़े तो ले गो, नहीं तो मोला छोड़ दो भैया, सेना ले ले चला। सावन में
2: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉ तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमरीका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमरीका ने कल राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वाशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल मॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के इतिहास में इस वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में

0: दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ଏତେବେଳ ଯାଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ କିଛି ସମୟ ପରେ।
3: ବନ୍ୟା ହେଉ ବା ମହାବାତ୍ୟା, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ
4: ଗାଁରୁ ସହର ଯାଏ सबु स्थान रे
3: आबाल वृद्ध बनिता समस्तंक पाई
4: जुआंग ओ सांतालंक ठारु बंडा एवं कोयांक जाए सबुरी भाषा रे
3: केवल आकाशवाणी।

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं मध्य प्रदेश में जल संरक्षण और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले श्री मोहन नागर के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं दीपा सिंह।
2: श्री मोहन नागर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप दशकों से काम कर रहे हैं पर्यावरण और जल संरक्षण के क्षेत्र में। जिस वक्त आपको पद्मश्री से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई, उस वक्त आपके मन में क्या भाव थे?
3: बहुत आनंद की अनुभूति हुई कि बहुत छोटे छोटे काम करके भी इतना बड़ा पुरस्कार प्राप्त हो सकता है। देश के हमारे प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, भारत सरकार का ध्यान छोटे छोटे कामों की तरफ भी है, लेकिन जो परिणामकारी काम समाज के लिए, प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए जो हम जन भागीदारी के माध्यम से कर रहे हैं, बैतूल जिले में पिछले 3 दशक से समाज ने उस काम को स्वीकार किया है, उसके परिणाम आए हैं।
2: आपको समाज सेवा की सीख कहाँ से मिली?
3: मैं एक ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हूँ। मेरे जन्म जो है वो राजगढ़ जिले के छोटे से गांव में हुआ है, और इसलिए ग्रामीण परिवेश में रहने के कारण और साथ में ही जो पारिवारिक हमारा बैकग्राउंड है वो किसान परिवार का होने के कारण हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, हमारे सभी परिवार के लोग ये उसी कार्य में लगे हुए हैं, खेती में, जल सुरक्षा में, पौधे लगाने में। मैं देखता था मेरे दादाजी जब गाय चराने के लिए जाते थे तो कोई भी ऐसा छोटा पौधा दिखता था तो उसमें कांटे लगा देते थे, कुएं में जाते थे, तालाब में जाते थे तो पहले उसमें से कोई कचरा निकाल करके बाहर करते थे और उसके बाद फिर उसके पानी का उपयोग करते थे। तो बचपन से ही अपने पूर्वजों की सीख जो मिली थी, बाद में फिर समाज कार्य के लिए गए तो समाज ने फिर सारी बातें अपने आप ही सीखने को मिली, तो स्वाभाविक रूप से फिर जो बचपन से सारी बातें थी वो आगे चलकर के काम आई और पर्यावरण की सुरक्षा, जल की सुरक्षा और समाज सेवा के लिए, शिक्षा को लेकर के, ग्राम विकास को लेकर के फिर बैतूल जिले को अपना कार्यक्षेत्र बनाया और उसी में फिर अभी तक लगे हुए हैं।
2: बहुत ही अच्छी बात कही कि आपने ये सीख जो है अपने घर से ही ली है। जल संरक्षण एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी, लेकिन आपने सामाजिक जिम्मेदारी से कैसे बनाया?
3: बिल्कुल, मैं जब बैतूल जिले में 91-92 में गया तो वहां का जो जिले में जब भ्रमण किया तो ये ध्यान में आया कि बैतूल जिले में वर्षा तो पर्याप्त मात्रा में होती है, 60 इंच के लगभग वहां बारिश होती है, लेकिन उसके बाद भी और वहां का जो समाज है, विशेषकर जो जनजातीय आदिवासी समाज है, वो दीपावली के बाद, खरीफ की फसल के बाद में ज्वार मक्का लेकर के उसके बाद फिर पलायन कर जाता है, क्योंकि उसके बाद कोई काम था नहीं। तो सबसे बड़ी समस्या थी, जब लोगों से बात की हमने फिर पूरे जिले में और 2-3 वर्ष लगातार अलग अलग माह में पदयात्रा की गांव की वहां पर, और उसके बाद लोगों से चर्चा में ध्यान

0: में है कि पानी गिरता तो पर्याप्त है लेकिन रुकता नहीं है, और इसलिए पानी को रोकने के छोटे छोटे प्रबंध किया जाए। वहां के जो बरसात के बाद जो नदी नाले बहते थे उसमें बोरी बंधान के माध्यम से छोटे छोटे स्टाफ डैम बना करके, और वो हमने लोगों के सहयोग से काम किया। जब हम एकल विद्यालय भी वहां पर 400-500 गांव में चलाते थे बच्चों के लिए शिक्षा के लिए, उन बच्चों को लेकर के अभिभावकों को लेकर जब हमने काम किया और जब ध्यान में आया कि एक छोटे से बोरी बंधान बनाने से 15 से 20 एकड़ की फसल सिंचित हो सकती है, खेती और की जा सकती है, तो लोग फिर उस अभियान में जुटे और हमने पूरा एक अभियान महोत्सव के रूप में पूरे जिले में प्रारंभ किया। आज बैतूल जिले के 500-600 से ज्यादा गांव में लोग स्वतः होकर के उस काम को करते हैं, क्योंकि हमने 2 दशक तक लगातार उस काम को किया है, और उसके कारण फिर जो लोग पलायन कर जाते थे उनके एक एक दो दो एकड़ की जब खेती होने लगी तो फिर पलायन भी कम हुआ और उसके साथ लोगों को उसके माध्यम से रोजगार भी मिला।
1: मोहन सर, आपने एकल विद्यालय की बात कही है, कैसे आपने बच्चों को एडुकेट किया है, जो वहाँ के पेरेंट्स थे वो अभिभावक कैसे आपके साथ जुड़े?
0: जब मैं बैतूल जिले में गया उस समय अनेक गांवों में स्कूल नहीं थे।

0: कम हुआ और उसके साथ लोगों को उसके माध्यम से रोजगार भी मिला।
1: मोहन सर, आपने एकल विद्यालय की बात कही है, कैसे आपने बच्चों को एजुकेट किया है, जो वहाँ के पेरेंट्स थे वो अभिभावक कैसे आपके साथ जुड़े?
0: जब मैं बैतूल जिले में गया उस समय अनेक गांवों में स्कूल नहीं थे, बाद में तो फिर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सब जगह हो गए विद्यालय, लेकिन उस समय नहीं थे। तो हम गांव में जाते थे तो बच्चे अशिक्षित थे, निरक्षर थे। पूछते थे कि सबसे बड़ी आपकी गांव की समस्या क्या, एक बार हमको बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था कीजिए। तो हमने फिर विद्या भारती की जनजाति शिक्षा के माध्यम से, भारत भारती संस्था जो हमारी है उसके माध्यम से, उसी गांव के कम पढ़े लिखे या जितना भी पढ़ा लिखा था उसका चयन किया, उसको हम ट्रेनिंग देते थे 10 दिन की। ट्रेनिंग में उसको अक्षर ज्ञान, भाषा ज्ञान, अंक ज्ञान, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाना है, उस ट्रेनिंग के माध्यम से फिर गांव में सिंगल टीचर स्कूल, उसको एकल विद्यालय इसलिए कहते हैं कि एक शिक्षक रहता है और वो गांव के बच्चों को पढ़ाता है। तो उसके माध्यम से फिर गांव में ये विद्यालय प्रारंभ किया और छोटे छोटे बच्चे जो बकरी चराने जाते थे या काम करने जाते थे उनको सुबह 7 बजे से 10 बजे तक भाषा ज्ञान, अंक ज्ञान, अक्षर ज्ञान करना, उनको संस्कार की कुछ बातें बताना, उनको उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे इसलिए योगासन व्यायाम कुछ बताना, देशभक्ति के गीत है, परंपरागत जो हमारी गोंडी संस्कृति, कोरकू संस्कृति के जो गीत है उसी भाषा में उनको बताना, और धीरे धीरे फिर उन बच्चों का शिक्षा के रूप में विकास हुआ, फिर स्कूल में उनका एडमिशन हुआ। हमें से कई बच्चे जो है उच्च शिक्षा की ओर गए हैं। हमने उसके लिए फिर 2-3 छात्रावास भी प्रारंभ किया, क्योंकि दूर के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, तो फिर हमने 3 जनजाति बच्चों के अलग अलग छात्रावास भी प्रारंभ किए। उससे भी बच्चे लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं, आज उच्च शिक्षा को लेकर के स्वावलंबी भी हुए हैं और सरकारी जॉब में भी गए हैं, कुछ अपना स्वयं का भी काम कर रहे हैं।
1: सर, आदिवासी और जनजाति समाज को सशक्त बनाने में भी आप काफी सहयोग कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो क्या मुख्यधारा से जुड़ गए हैं या हमें और प्रयास करने की जरूरत?
0: हमारा जो जनजाति आदिवासी समाज है प्रकृति से जुड़ा हुआ समाज है, और इसलिए उनको कोई चीज बताना कि प्रकृति की रक्षा कैसे करना, ये सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। तो हमने तो उनसे ही जाकर के सीखा कि कैसे प्रकृति का संरक्षण किया, क्योंकि वो तो हजारों वर्षों से प्रकृति के बीच में रह रहे हैं और जो जंगल सुरक्षित है वो उन्हीं के कारण सुरक्षित है। हमने शहर में रहकर के तो जंगल खत्म कर दिए, गांव में जंगल खत्म कर दिया, वो प्रकृति प्रेमी होने के कारण, प्रकृति पूजक होने के कारण, और इसलिए उन्होंने नदियों को और सारी जो सुरक्षा करके रखी हमारे जीव जंतुओं को। तो लेकिन उनमें शिक्षा का अभाव था, आधुनिकता जो थी वो उसका अभाव था, उसको लेकर के हम उनके बीच में गए, जैविक खेती को लेकर के, ग्राम स्वावलंबन को लेकर के। कुछ गांव में हमने होम स्टे प्रारंभ किए जिसके माध्यम से लोग वहां आकर के रुकने लगे, उनकी आर्थिक व्यवस्था में सुधार हुआ। हमने एक अन्नपूर्णम मंडपम योजना बनाई कि घर का जो पानी हम उपयोग करते हैं वो जो बहके जाता है उसमें ही हम सब्जी भाजी लगाए, हमने कुछ बीज उनको दिए, और ऐसे घर घर में पीछे जो है वो इस प्रकार की सब्जियां लगा करके एक स्वावलंबन की दिशा में वो आगे बढ़े। जैविक खेती के माध्यम से कैसे, क्योंकि गोपालन और पशुपालन बड़ी मात्रा में वहां होता है, तो जैविक खेती कैसे कर सकते हैं ताकि बाजार से जो हम रासायनिक खाद और कीटनाशक जो महंगा खरीदते हैं उससे हमको छुटकारा मिले, इस दिशा में प्रयास किया। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयास किए जिससे उनको एक आर्थिक स्वावलंबन की दृष्टि से और एक सशक्त उनको एक काम मिला गांव में। और जो पलायन था, फिर सरकार के बीच बीच में अनेक प्रकार की योजनाएं आई जिससे बिजली को लेकर के, पानी, सड़क सब गांव गांव तक पहुंची, उसमें हमारा भी काम छोटा छोटा ही गिलहरी की तरह हमने भी उसमें किया, जिससे समाज को और एक स्वावलंबी समाज बनने में उनके माध्यम से उनको एक लाभ मिला।
1: जल गंगा अवतरण आपका अभियान है जिसे जन आंदोलन बनाया है, आप इस अभियान की सोच और प्रभाव के बारे में बताइए हमारे श्रोताओं।
0: जी बिल्कुल, जब हम उन लोगों के बीच में गए तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी गांव की समस्या क्या है, तो हमारे गांव की समस्या पानी है। तो ये समस्या कब से है, तो ये 20-25-30 साल से हुई है। इसके पहले क्या था, बोले पहाड़ों पर जंगल था घना, जब जंगल समाप्त हुआ धीरे धीरे तो फिर वो पहाड़ जो है वृक्षविहीन हो गए, तो जो नदी नाले बहते थे वो भी धीरे धीरे बंद हो गए, और इसलिए पहाड़ों पर पानी नहीं रुकता है। इसलिए पहाड़ों पर पानी रोकना है उसके लिए कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। तो फिर हमारे ध्यान में आया कि गंगा जी का अवतरण हुआ था, कैसे हुआ था, तो भगीरथ गंगा लेकर के आए, इसी कंसेप्ट को लेकर के फिर हमने गंगा अवतरण अभियान बैतूल जिले में प्रारंभ किया। सबसे पहले वहां की जो सोना घाटी उस पहाड़ी को हमने एक मॉडल के रूप में बनाया, वर्षा का जल कैसे रुके उसके लिए हमने फिर खंतियां खोदना प्रारंभ की, जहां जैसी भौगोलिक संरचना थी, कहीं 6x2x2 की, कहीं 10x2x2 की, और उसके लिए हमने समाज को आह्वान किया कि हम सब, क्योंकि ये हमारी धरोहर है और अगर ये पहाड़ी पर पेड़ नहीं है तो हमारे यहाँ जल भी नहीं बचेगा, क्योंकि पहाड़ियां हमारे यहाँ पर जितने ही है ये सब हमारे ओवरहेड टैंक है, पानी की टंकियां हैं, जैसे पानी की टंकियां शहरों में होती है उसमें पानी भर देते हैं फिर बाद में सप्लाई करते हैं, तो ये पहाड़ हमारे पानी की टंकियां हैं, इस वर्षा का जल भर जाता है बाद में फिर हमको मिलता है, तो इसलिए इसको जल से भरना है। तो धीरे धीरे हमने खंतियां खोद करके उसमें वर्षा का जल रोका, वहां पर पौधारोपण किया, और उसके माध्यम से धीरे धीरे अपने आप 3-4 वर्षों में जहां 1000 फुट पर भी पानी नहीं था वहां 100 फुट के नीचे 60 फुट पर भी पानी उस जगह पर आ गया। तो एक परिणाम था उसका, ये गंगा अवतरण था कि उसके गंगा जी को रोको और उसके बाद धीरे धीरे फिर नदी नाले के माध्यम से कुएं बावड़ी से उसका पानी हम सबको मिलेगा। और फिर ये काम पूरा हमने 75 पहाड़ियों पर बैतूल जिले में ये काम किया। मोदी जी का जो आह्वान था कैच द रेन, ये महामंत्र है मोदी जी का, जो उन्होंने कहा कि वर्षा के पानी को जहां गिर रहा है वहां पकड़ लो, 10 मीटर से ज्यादा अगर वर्षा का जल बह गया तो फिर वो अपना रास्ता बना लेता है, और इसलिए 10 मीटर के पहले ही कोई संरचना बना दो, कोई पेड़ लगा दो, कोई खंती खोद

0: दो, कोई घास लगा दो, कोई पत्थर से उसको रोक दो, तो फिर वर्षा का जल धीरे धीरे जमीन में जाने लगता है, उसकी गति कम होती है, तो तेज हो जाएगी तो फिर वो आगे बढ़ता जाएगा। और इसलिए उन्होंने कहा कि वर्षा की पहली बूंद जहां गिरे वहां उसका प्रबंधन करना, यही जल प्रबंधन का अनाराम है। और हमने वहां के स्थानीय जनजाति समाज, आदिवासी समाज के साथ मिलकर के यही काम बैतूल जिले की पहाड़ियों पर किया, यही गंगा उत्थान अभियान है।
1: आपसे चाहेंगे कि कुछ छोटे छोटे ऐसे टिप्स आप हमारे श्रोताओं को दें, गर्मी आएंगी फिर बारिश आएगी तो वो भी जल का संचयन कर सकें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए तीन उपाय हमको करना पड़ेंगे। एक तो वर्षा के जल का संरक्षण करना पड़ेगा कि वर्षा का जल कैसे अधिक से अधिक जमीन के अंदर जाए। फिर जो संरक्षित जल है उसका समुचित उपयोग करना पड़ेगा, और जो उपयोग किए हुए जल का पुनर्उपयोग करना पड़ेगा, कितना हम रीयूज कर सकते हैं पानी का। ये तीन बातें समाज को आज सिखाने की आवश्यकता है। केवल एक काम करेंगे तो जल संरक्षण नहीं होगा, जल प्रबंधन नहीं होगा। ये तीनों बातें, सबसे पहले हमारे यहाँ क्या है कि बारिश मुश्किल से 100 दिन होती है, और उसमें भी 10 दिन में ही 90-80% बारिश हो जाती है। बारिश का जो पीरियड है तेज बारिश का बहुत कम है, 8-10 दिन 12 दिन ही हमारे यहाँ पर है, और इसलिए उतने में ही हमको जल प्रबंधन करना है। इसलिए हमको उपाय करना पड़ेगा कि पानी जहाँ गिरता है हमारे घर का पानी घर में रुके, उसके लिए हमारी घर पे की छत 1000 फुट की भी है तो उसमें 1.25 लाख लीटर पानी उसमें गिरता है, तो कैसे हम उसको कोई सोक पिट बना करके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बना करके हमारे घर में ही कहीं पर, आज हम घर बनाते तो इतनी सारी चीजें बनाते हैं, तो अपने आंगन में या घर के पीछे कहीं भी एक ऐसा स्थान बनाए जिसमें हमारी छत का पानी हम जमीन के अंदर उतार दें, तो पानी की समस्या अपने आप हल हो जाएगी। फिर जिस पानी का उपयोग कर रहे हैं उसका उचित रूप से उपयोग करें, कि पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो जितना चाहे उतना मन चाहे उपयोग करें, ऐसा नहीं, अनुशासन पूर्वक आज जल का उपयोग करने की आवश्यकता है। फिर आपने जिस पानी का उपयोग किया उसको सिंचाई के रूप में, गमलों के रूप में, अन्य रूप से उसको कैसे उपयोग कर सकते हैं, उसका पुनर्भरण कैसे कर सकते हैं, कुल मिलाकर के हमको आज आवश्यकता इस बात की है कि युवा समाज जो है इस दिशा में आगे आए, और छोटे छोटे काम अपने गांव की, कोई पास की पहाड़ी होगी, कोई पास का ही क्षेत्र होगा, किसान अपने खेत में मेड़ बंधन करें, गांव का पानी गांव में रुके, इसलिए तालाबों का हमारी जो जल शक्ति मंत्रालय है, मोदी जी ने एक बड़ा काम किया है उसको बना करके, गांव गांव में तालाब बन रहे हैं, अमृत सरोवर बन रहे हैं, उसके माध्यम से अपना रोके, फिर पहाड़ का पानी पहाड़ में रोके, खेत का पानी खेत में रोके, नदी का पानी नाले का पानी उसमें रोके, तो ये छोटे छोटे उपाय अगर हम समाज के साथ मिलकर के करते हैं और व्यक्तिगत स्तर पर करते हैं तो उसका बहुत लाभ मिलता है। एक आपने 6x2x2 की खंती भी अगर खोद दी है कहीं पर और उसमें वर्षा का जल जा रहा है तो 30-35 हजार लीटर पानी केवल उसके माध्यम से जमीन के अंदर चला जाएगा। हम छोटा सा काम करेंगे तो उसका एक परिणाम जो है बड़ा होगा। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण जैसे मैंने आपको कहा कि सोना घाटी की पहाड़ी है, वो पहाड़ी वो है, कभी आपने भवानी प्रसाद मिश्री जी का नाम सुना होगा, उन्होंने कविता लिखी थी, सतपुड़ा के घने जंगल ऊंगते अनबने जंगल,
1: वो उसी
0: पहाड़ी पर उन्होंने 1939 में बैठ करके लिखी थी। और जब 2014 में उनका जन्म शताब्दी वर्ष आया तो हमने उनका जन्म शताब्दी मनाया, तो जब उनके बारे में पढ़ा और उस पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वो वृक्षविहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियां कुछ बची थी। तो हमने उसी पहाड़ी को पहले कहा कि भवानी प्रसाद मिश्र जी को अगर सही श्रद्धांजलि देना है जन्म शताब्दी वर्ष में तो इस पहाड़ी को फिर से हरा भरा करेंगे। और इसलिए बैतूल के लोगों को, आसपास के गांवों का आह्वान किया कि ये सोना घाटी की पहाड़ी हमारी धरोहर है, इसको हम बचाएंगे। और उसी पहाड़ी पर गंगा उत्थान अभियान प्रारंभ किया और वहां पर 8000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई, और उसके बाद फिर 32000 से ज्यादा उसमें पौधे लगाए, जो परंपरागत पौधे थे उनका संरक्षण किया। आज लाखों की संख्या में उस पहाड़ी पर पौधे फिर से हरे भरे हो रहे हैं। तो ये काम समाज के माध्यम से कर सकते हैं, और ये पूरा हजारों लोगों ने अभियान में पूरा अपना योगदान दिया।
1: बहुत अच्छी बात कही है। चूंकि आप साहित्य से भी जुड़े हुए हैं तो आपकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कृति चतुर्मास, मैं चाहूंगी कि उसके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं।
0: जी बिल्कुल, चतुर्मास जो है प्रकृति को समर्पित, गांव को समर्पित, हमारी नदियों को लेकर के, परंपरागत जो हमारी पद्धति थी उसको लेकर के, कि नदियां कैसे बनती है और लोग पानी का संरक्षण कैसे करते थे और हमारे पूर्वजों की क्या परंपरा थी, उसको लेकर के ही उसमें कुछ कविताएं लिखी है। उस कृति को मध्यप्रदेश की साहित्य अकादमी ने और दुष्यंत कुमार पुरस्कार से भी सम्मानित किया है।
1: आप जन अभियान परिषद में भी उपाध्यक्ष हैं, भारत भारती शिक्षा संस्थान से भी जुड़े हैं, शासन, शिक्षा और समाज सेवा, इन तीनों भूमिकाओं को आप कैसे देखते हैं?
0: जी बिल्कुल, ये एक ही काम है, ये एक प्रकार से सेवा की त्रिवेणी है। जब मैं बैतूल जिले में यह काम कर रहा था, मध्य प्रदेश सरकार को ध्यान में आया होगा कि यह काम पूरे प्रदेश में होना चाहिए, और इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद का उपाध्यक्ष बना करके पूरे प्रदेश में काम करने का अवसर दिया है। और पिछली बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जो अभियान है जल गंगा संवर्धन अभियान, उसको लेकर के हमने पूरे प्रदेश में हजारों गांवों में जाकर के इस अभियान को लिया, और उनके नेतृत्व में हमने 40 लाख लोगों को जनभागीदारी से इस नेटवर्क से लोगों को जोड़ा। हमने पुरानी 2200 बावड़ियों को स्वच्छ किया, 7000 कुओं को साफ किया, नदियों के तट स्वच्छ किए और पुरानी जल संरचनाओं को हमने साफ करके समाज के माध्यम से नई जल संरचनाओं का निर्माण किया। अभी पूरे प्रदेश में हमने उसी के माध्यम से 7000 से ज्यादा बोरी बंधान बना करके वर्षा के जल को रोकने का काम किया है, शिक्षा के माध्यम से और पर्यावरण के माध्यम से और समाज सेवा, ग्राम विकास को लेकर के। और ये जो तीनों बातें हुई है, मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार

0: का काम करने का अवसर दिया है। पहले एक जिला हमारे कार्यक्षेत्र में था, पूरे 55 जिलों का काम उन्होंने दिया।
1: बिल्कुल मोहन जी, आपके अनुभव और विचार निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं को जल संरक्षण और उनके प्रति सोचने के लिए, कुछ करने के लिए प्रेरित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।
0: जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी मध्य प्रदेश में जल संरक्षण और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले श्री मोहन नागर के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही थी दीपा सिंह।
3: पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी।

0: ଶୁଣିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍କୃତିର ପାହାଚ, ପ୍ରଯୋଜନା ସତ୍ୟସ୍ମିତା ବେହେରା, ଉପସ୍ଥାପନା ଜୟଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ।
1: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
2: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
1: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
2: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे,
1: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।
0: आपण माने कार्यक्रम सुनुछन्ते आकाशवाणी कटक केन्द्रर। कार्यक्रम प्रचारित होउछि 308.6 मीटर तथा 972 किलोहर्ट्ज जोगे।
3: अच्छा दास बाबू, आपण घर 1970 तैयारी, राइट? हेले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि? अरे

0: ଶୁଣିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୁବବାଣୀ।
1: ଆଚ୍ଛା ଦାସ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା 1970ରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ରାଇଟ୍? ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କେମିତି ଅଛି?
2: ଆରେ ଏଇଟା ଏକଦମ ସିମ୍ପଲ, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲି, ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚେଟିନାଡ ସିମେଣ୍ଟ ଉପରେ।
3: ଶକ୍ତି ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ନୁହେଁ ବରଂ ପିଢ଼ି ପାଇ ରହିଥାଏ। ଚେଟିନାଡ ସିମେଣ୍ଟ, ସୁପର ଗ୍ରେଡ୍ ସିମେଣ୍ଟ, 64 ବର୍ଷର ଦୃଢ଼ ମୂଳ ଦୁଆ। ଚେଟିନାଡ ସିମେଣ୍ଟ, ଦ ପରଫେକ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ ଚଏସ୍।
4: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
5: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
4: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
5: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर,
4: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा है,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

महाबली रावण ने अपने भुजबल से सारे विश्व को अपने अधीन कर लिया था। बढ़ते अनाचार और धर्म के प्रति अनास्था देखकर पृथ्वी भयभीत और व्याकुल हो गई। अंत में और कोई उपाय न देख पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और वहां पहुंची जहां रावण से त्रस्त और उत्पीड़ित देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रो रो कर उन्हें अपना हाल सुनाया। ब्रह्मा जी ने धरती को धीरज धारण करके श्रीहरि के चरणों का स्मरण करने का उपदेश दिया।

0: केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियमस्य अन्तर्गतं राज्येभ्य 25,000 कोटि रूप्यकाणां वित्तीय सहायतां प्रदत्तवान्। केन्द्र सर्वकारेण मेटा संस्थायै इंस्टाग्राम मञ्चात् बाल शोषण सम्बद्ध विज्ञापनानां निष्कासनस्य आदेशः प्रदत्तः। सहैव सप्तदिनेषु स्पष्टीकरणं प्रस्तोतुं निर्देशः अपि प्रदत्तः। अद्य छत्तीसगढ़स्य सुप्रसिद्धा पांडवनी गायिका तीजनबाई दिवंगता। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री च तस्याः निधने गभीरं शोकं प्रकटितवन्तः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य गुजराते कोंकणे गोवायां मध्य महाराष्ट्रे तथा ओडिशा राज्ये च अतिवृष्टेः संभावनामालक्ष्य रक्त संचेतना घोषिता। अपि च आईसीसी महिला वर्गस्य 20-प्रति-20 विश्व चेस क्रिकेट क्रीडा स्पर्धायाः अंतिम स्पर्धा अद्य सायंकाले लंदन नगरे भविष्यति। अस्याम स्पर्धायाम् इंग्लैंड दलम् ऑस्ट्रेलिया दलेन सह स्पर्धिष्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रशासनेन द्रवीय प्राकृतिक वायुः आपूर्तिमालक्ष्य आपत्कालिकाः प्रतिबन्धाः निरस्ताः। अयं निर्णयः पश्चिम एशियायां संघर्षे युद्धविरामानन्तरं होर्मुज जलडमरु मध्यमार्गेण प्राकृतिक वायुः आपूर्तेः पुनः प्रारम्भे सति कृतः। पेट्रोलियम प्राकृतिक वात्येन्धन मन्त्रालयेन अधिसूचनायाम् उक्तं यत् 26,000-2,000 वर्षस्य प्राकृतिक वायु आपूर्ति नियमनादेशः इत्यस्मिन् संशोधनं कृतम्। अस्मिन् संशोधने तानि प्रमुखानि आपत्कालिकानि प्रावधानि निरस्तानि सन्ति येषां माध्यमेन प्रशासनं देशे उत्पादितस्य प्राकृतिक वायुः तथा आयातितस्य द्रवीय प्राकृतिक वायोः आवंटने प्राधान्यं दातुम् अनुमतिः आसीत्। होर्मुज जलडमरु मध्यात् द्रवीय प्राकृतिक वायोः आपूर्तौ व्यवधानस्य अनन्तरं आवश्यक वस्तु अधिनियमस्य अन्तर्गतम् अस्य वर्षस्य मार्च मासे आपत्कालिकाः आदेशाः प्रवर्तिताः आसीत्। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जुलाई मासस्य प्रथम दिनांकात् विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अर्थात बीबीजी रामजी अधिनियमः सफलतया प्रभावशीलः अभवत्। मन्त्रिणा अद्य दृश्यश्रव्यमाध्यमेन अस्य अभियानस्य अन्तर्गतं राज्येभ्यः 25,000 कोटिरूप्यकाधिक धनं च प्रदत्तम्। श्रीचौहानेन सर्वेषां राज्यानां केन्द्रशासितप्रदेशानां च ग्रामीणविकासमन्त्रिभिः साकं वीबीजी रामजी अधिनियमस्य क्रियान्वयस्य प्रगतेः समीक्षापि कृता। तेन प्रोक्तं यत् अद्य विमुक्तायाः प्रथमांशधनराशेः मुख्यमुद्देश्यं राज्यानां पार्श्वे पर्याप्तनिधेः सुनिश्चयनम् अस्ति, येन श्रमिकाणां वृत्तिः 15 दिनानाम् अभ्यन्तरे एव प्रदातुं शक्येत।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है। 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: इंस्टाग्राम इति सामाजिक संवाद मंचे सशुल्केषु विज्ञापनेषु प्रचलतः बाल यौन शोषण सामग्र्याः गंभीरं वृत्तान्तं मत्वा भारत सर्वकारेण मेटा इत्यस्याः संस्थायाः कृते एका तीक्ष्णा दृढा च सूचना प्रसारिता। आधिकारिक स्रोतोभिः ज्ञापितं यत् सर्वकारेण इंस्टाग्राम प्रशासनं तादृशां सर्वेषाम् अपमानास्पद सामग्रीणां विज्ञापन प्रसारणं प्रवेश सुविधां च सद्यः प्रतिरोद्धुं समादिष्टम्। केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्रालयेन अस्य विषयस्य गभीरतां वीक्ष्य मेटा संस्थायाः 7 दिनानाम् अभ्यन्तरे विस्तृत स्पष्टीकरणं याचितम्। सर्वकारः सम्प्रति अस्यापि पुनरीक्षणं करोति यत् अयं मञ्चः भारतस्य मध्यस्थ सुरक्षा मार्गदर्शिकानां निष्ठापूर्वकं पालनं करोति न वा। उल्लेखनीयं वर्तते यत् भारते डिजिटल नियमस्य अन्तर्गतम् आपत्तिजनक सामग्र्याः बाल यौन शोषण सामग्र्याः वितरणं प्रसारणं च कश्चन दण्डनीय अपराधो वर्तते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। छत्तीसगढ़ राज्यस्य प्रख्याता पांडवनी गायिका पद्मविभूषण पुरस्कारेण अलंकृता च डॉ

0: जल्दी तो पिन पैक कर राजू, मोबाइल छाड़े।
1: अरे दीदी, बैंक रो नंबर दरकार, रिफंड आसी मिलीगला। एबे कॉल करू छी दीदी।
0: बिना नंबर जांच करी के प्रायतः जालिया लोके बैंक रो नकली वेबसाइट और मिच्छो नंबर द्वारा टंका ठकी करी थांदी।
1: तो ठीक नंबर
0: बैंक रो ऑफिशियल वेबसाइट किंबा कार्ड रे
1: तमे तो बंचाई देला दीदी।
0: कामरु नु हे।
2: आरबीआई कहे
3: सठिक आर्थिक आचरण रखे अपन को सुरक्षा रो ध्यान।
4: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही आरपीएलआई, इससे बेहतर कुछ नहीं।
5: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: ए दुर्ग मु प्रथमे अधिकार करिछि
1: मु प्रथमे अधिकार करिछि
0: मोर सैन्य माने प्रथमे एठार प्रवेश करिछि
1: ना मोर सैन्य माने प्रथमे प्रवेश करिछि
0: मु वर्तमान ए दुर्गर अधिकारी
1: ना अधिकारी मु
0: के परि
1: अधिकार थिबारु
0: कि अधिकार
1: राजार जे अधिकार राज्य रे थाय
0: के राजा
1: समग्र ओडिसा राजा मु केवल ए दुर्गर नुहे रामचंद्र
0: तुमे समग्र पृथ्वीर राजा होई पारो किंतु ए दुर्गर कदापि नुह विक्रमदेव
1: नुहे
0: ना ना नुह
1: तबे देखा जाओ कि ए दुर्गर राजा
0: किपरी
1: किपरी
0: हाँ हाँ किपरी देख देखा जीव कि ए दुर्गर राजा
1: जार शक्ति अधिक
0: कार शक्ति अधिक
1: मोर ना परीक्षा कर देखा कहार अधिक
0: परीक्षा
1: हाँ परीक्षा आत्मरक्षा कर बर्बर
0: आत्मरक्षा
1: हाँ आत्मरक्षा का पुरुष
2: महाराज सेनापति अर्जुन सिंह आक्रमण करी
1: करू जा सैनिक आगे निष्पत्ति हो कि दुर्ग राजा नचे युद्ध रे की लाभ
0: ता सत्य विक्रम देव युद्ध रे की लाभ आगे निष्पत्ति हो कि दुर्ग राजा
1: से तो निष्पत्ति होई छी समग्र ओडिसा देश रे जे राजा ता निकट रे दुर्ग खंडर प्रश्न

0: 말았? 선마이 오빠스테다.
1: 나, 얘도 언나.
0: 언나이 건 말았?
1: 언나이 눈에 브라리? 그걸 언나야.
0: 언나이 또 뭐로? 말하던 걸 건어지.
1: 둠벌 언나래 모르니스크루티에 건나. 분이 아흐리에 건나. 뭘 에퍼리 오빠에 벌하여나. 브라리. 브라리. 둠벌에 너야 아니면 때, 뭉 그렇더껴. 뭐로 집어넣어 캬빠이, 둠벨 니저로 집어넣어대받고 프로스투도 어쳐. 둠벌어 보여. 미끄러마 못해 먼디 살아래 헛다거리베. 뭘 어느 맛으로 켜보나이 브라허리 뭉 프라스트 더치 둠베 브라허리 머리바꾸 잖아 아우제 뭉 비살아 우리 사라지러 사석과 빨아꺼 니아먹고 벌리 아프나꺼 버리치다 거리바꾸 우퍼죽다 머네 세히 뭉 루뚜께테 보여거리비 나 브라허리 따 해보나이 둠벌어 집어넣어 어물려 눌러봐 둠베 번치다 머리바로 빠뜨려 뭉 머래 둠벌어 너야님은 때 मोर प्रतिदान देवार किछी नाही प्रहरी अछि केवल एई हृदय
0: महाराज
1: दुख नाही प्रहरी तुम भे जा निज स्थान को फेरी जा
2: होशिया होशिया
3: महाराजंकर समस्त कुशल
1: अकुशल किछी नहि विक्रम देव
3: युद्ध शेष हला
1: शेष हला तबे विक्रम
3: किपरी
1: जेपरी देखुचे विक्रम देव
3: देखुचे तुम्हें महाराजा पुरुषोत्तम देव किंतु दुख हेउची बसिबार सिंहासन नाही पिंदिबार मुकुट नाही
1: सब अछि विक्रम देव वर्तमान मु जेउ सिंहासन रे आसिना जेउ राजमुकुट रे मोर मस्तक मंडित ता अपहरण करिवार क्षमता तुम्हर नाही लिखता
3: ओडिसार महाराजा तो बेस कवि थिले बा न्यायक थिले ता नहले किए पड़ी किंतु पुरुषोत्तम आज किए ओडिसा राजा राजपुत्र विक्रम देव नाराजद्रोही पुरुषोत्तम किए राजा
1: कृत्य प्रति अत्याचार तत्पर पुणी बंदी प्रति तिरस्कार ए कलंक विक्रम तुम्भर नुहे ये मोर कलंक पुण्य जन्मभूमि कलंक अनंग नरसिंह कपिलेन्द्र उन्नत कीर्ति कलंक क्षत्रियर उदार उज्जवल धर्म कलंक
3: दुख लगुच पुरुषोत्तम ना ना ना पुरुषोत्तम महाराजा
1: निश्चय पुरुषोत्तम महाराजा से आज बंदी बोली जे महाराजा नुहंती ताहा नुहे देख विक्रम तुम्हर बंधन छिन्न कली पुरुषोत्तम विक्रम हस्तरे बंदी हेबार प्राणी नुहे
3: हत्या कर सैनिक गण
4: हत्या कार हत्या विक्रम देव
3: हत्या वृद्ध अर्जुन।

0: सिंह तुम वे ठहरे के उद्देश्य
1: उद्देश्य
2: विक्रमदेव तुम्हें बंदी आउ बंदी नरसिंह देव गोपाल किशोर देव
0: बंदी
2: हाँ हाँ बंदी सैनिक गण एमानंकु घेरि जाओ
3: जय महाराज करो
4: सैनिक बर अर्जुन सिंह बड़ शुभ मुहूर्त रे साक्षात से विदाय बेलर कथा भालु थाए तुम्हें चली गल सेतिक मात्र देखा भाभी सेतिकरे आमर युद्ध शेष हला ओडिसार राज सिंहासन को कलंकित करी मु एही थारे चीर विदाय नेबी किंतु ए जेपरी विधिर एक अद्भुत निर्देश भाग्यर एक विचित्र क्रीड़ा बड़ मधुर ए साक्षात पुनराय युद्धर संवाद कण कहिपार अर्जुन सिंह
2: संवाद समस्त मंगल महाराज युद्ध आज शेष वर्तमान तोफान स्थिर आकाश निर्मल सौभाग्यर भी पुनराय ओडिशार विशाल आकाश रे उज्जवल किरण बर्षण करिब आउ चिंता नाही महाराज विजय धर्मर महत्तर उदार राजनीतिर
3: सन्नगण जय भीरी बजा
5: जय महाराज।

भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से और टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारे

0: संवाददाता से।
1: मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग एक घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गयी। शहर में पेड़ गिरने की दो अलग अलग घटनाओं में 63 वर्षीय एक व्यक्ति और 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण थाने और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद कर दी गई है, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और गढ़चिरी, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित आदोशी जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक जलस्तर बढ़ जाने से 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमण और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2,500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गांव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉ जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उनके आकलन की साझा करने की सराहना की। डॉ जयशंकर इस महीने की 13 तारीख को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करेंगे, जहां वे 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
3: विद प्राइम मिनिस्टर्स अराइवल इन इंडोनेशिया,
4: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

0: commemorating Tagore's visit to Indonesia.
1: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। समूह ने कहा कि वह वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। भाग लेने वाले देशों की अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए आज तेहरान में राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने बताया कि यह हमला होदेइदा के पास हुआ, जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलुओं का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाली विश्व विख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन भाई को आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों सहित हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति तीजन बाई का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीजन बाई ने भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं की कालजयी कहानियों को लोगों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किये। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा

0: 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह तीर्थ यात्रा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉ मांडविया ने मीडिया से बातचीत में प्रतिदिन कम से कम एक घंटा मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने का आग्रह किया।
1: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पोल्यूशन का सॉल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। उधर महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सुरमा
1: कौन
0: किसी कोई बनी एमिती निर्णय रह गला मन को बुझी भरे
2: हाँ कष्ट है बो हेले मन को बुझे ही भी कौन जेहूं दशर राजा एडे निर्दय
0: छी एमिती कोई बनी सुरमा महाराजा केवे निर्दय नहंती
2: निर्दय नहि थिले तुम ऊपर मंदिर गड़ी पर दायित्व देई थांते काहे की दरिया भितरे मंदिर तयारी हबो ए कोन सहज कथा असंभव
0: सब असंभव को संभव करिछि ए उड़िया शिल्पी उत्तल लहरी को करायत्त करी महाराजा को कल्पित मंदिर मु निर्माण करिबि शर्मा
2: जदि न हुए
0: नहले उत्कल र शिल्पी कुल निश्चिन्त नहि जेबे एटा तो महाराजा आदेश
2: टिके जदि मो कथा

0: May I come in, sir?
1: Yes, come in.
0: Sir, namaskar.
1: Oh, Govinda, please take your seat.
0: Khyama kare, sir. Kali onek rati jai basi file kama karu karu, dehota kintu kharap lagila. Statement ta shesh kori parini, tebe aji sandhya sudha nischoy shesh kori debi.
1: Kantha ghonta ku chahila?
0: Sir.
1: Ketra bajichi?
0: Sir, 5:30.
1: Office samay kete ru kete?
0: Sir, 10:05.
1: So this is beyond office hour, isn't it?
0: Sir.
1: Office hour bhitare mu tamar officer, tamar mu adhasthana karmachari. Do you remember?
0: Haan sir, kintu...
1: Oh, nothing doing. Office hour pare mu kounisi official katha suniba ku prastut nuhe.
0: Kintu sir, apan ta mate dokei thile.
1: That's right. Kintu office hour pare. Aau kahin ki dokei chi jana?
0: Sir, say statement pai.
1: Oh, puni say office katha. Khire Govinda, aame duhe para balya bandhu.
0: Thile. Kintu bartavan aame bhitare akash pathar prabhed. Apana deputy magistrate, amu samanya kirani.
1: शिक्षागत योग्यता के बंधुत्वर मापकाठी हेई पारे ना भाई मु जेतो ऊपर को उठिले भी तो आखिरे सेई डरकुला अंक आसन थिबा निरीह संगटाए आ तू क्लास रो सबुठ मेधावी छात्र मोर बाल्य बंधु सेई गोविंद
0: से सब हो तो इतिहास पलटि जाई छी
1: देख गोविंद एटा किंतर भारी अन्य थरे तो कहली आमे पूर्वर सेई पढा साथी पुणी काहे के मान्यार्थ संबोधन आज्ञा आपण बाबू
0: कोन करी भाई परिस्थिति रो चपारे
1: एग्जैक्टली मु आज तते ठीक सही प्रश्न पचरे गुडा किछि एमते कोन हैला तू अर्धा पाठ पढा रही गलु
0: छाड़ भाई से दुख बर मु भूली जाउ चेष्टा करू छी
1: मु जाने गोविंद हेले दुखटा अन्य आगर प्रकाश कर देले मनटा हालुका हे जाय मु आगर तो अति तरह पृष्ठ मिलियो के चेष्टा कर देखियो तते केते रिलैक्स लागिवो
0: ताहले सुन तमरी कैडर रो ऑफिसर तोठ अनेक सीनियर
1: तू कहा कथा कहउछु
0: नवब नवकिशोर राय
1: ओ हां से त बर्तन पूरी रे अछंती कहीं कौन है लगी?
0: सही नब्बों को झिया श्रीमती बर्तन मर्स्त्री।
1: अच्छा, कंग्रेचुलेशंस। इतने बड़ा जमीदार परिवार बंधु बंधी चुवा था चा।
0: तारी परिणाम तो बर्तन तो भग्य हो पड़ी ची।
1: तामने?
0: तू तो जानो, मु पीला दिनों बापा मामा छेउंडा, मामा को दायरों मनी सही ची।
1: जाने गोविंदा।
0: श्रीमती से तो मुझे जेते बड़े भागकर पस्ता पड़ी ला मु डेप्युटी ससुर बुढ़ाई जोतो दवा चाहूंगे पत्र मुँह बारण कले मामू अवश्य क्षिप्त है तबे मोर स्पष्ट बात्या देखी तू नहीं गले
1: तू कौन कहिलु तो ससुरंकु
0: मोर तांका पाखरे थिला गोटे मात्र निवेदन मु जने मेधावी छात्र से जेमिति मते उच्च शिक्षा देवार प्रतिश्रुति दियंती
1: से कोन नहीं कले

0: Babu. Babumu?
1: ओ, बिसिया।
0: कितने दिन एमती बोमा को फटा के छिड़ाई रोड आ रही बाबू
1: बिसिया
0: मो सानो को मानो बाबू ओलुना माँ को मुंह को चाहिए सब भूली जाओ
1: भूली बाबू चाहिए भी कौन भूली है बिसिया छाड़ सब भाग्य ओलुना कौन कर ची
0: कौन कर दिया हो आठ वर्ष रह चियो नाची कुछ खेलवार बेहोता करो संज बड़ घिरी घिरी नाची थके पड़े जलखिया दे शुई पकई आपण चा बस
1: हाँ जा कपे चा मुंडटे भी कमी धक धक
0: होती बाबू
1: विषिया कह सब भूली संसार भांगी जा दुख केवल संसारी लोक ही पूछे
2: बाबू
1: के ओ शमशेर तू ये अबल रे
3: मो भासी गली बाबू मते दया करंतु
1: दया तते पुनी दया
3: मो घर ना मते फेरे दियंतु बाबू
1: तोर पुनी की घर घर जमी सब नीलाम उठिची से सब मोर वर्षक भितर परिशोध करी बोली एक दुई तीन करे तीन हजार टका जत बेले गणी नै थिलु सेत बेले कोन भाबी नथिलु टंकाटा परिशोध नकले घर द्वार सब नीलाम हिजो बोली
3: आर वर्षटे मते समय दियंतु हजुर वर्षक भितर सब सुधमूल आपनकर परिशोध नकले
1: पूणी वर्षे तीन वर्ष भितर जा हेई पाला नै
3: एई थरक विश्वास करंतु हजुर एई थरक
1: विश्वास निमखाराम बदमाश के ऊपर

0: पुनी विश्वास मु पचाउची तोठो जीवन नै
1: बाबू हजारे टंका रे सात एकर असली जमी आ घरबाड़ी सब चली जीव एटा कण वाजिब हला न्याय विचार हला
0: सैतान तोठो जीवन नै
1: सैतान किए बाबू तमे न मु
0: शमशान तो भूली जाउछु एटा होछ कोटा भद्र लोकर घर
1: भदन ठोक छिए भदन नोक बाबू चोर डकायत माने रात्रि रे लुची लुची चोरी करंती डकायती करंती खून करंती लेकिन आपन को भली जो धोप धावलिया पाठुआ लोक माने दिन दीपरे आमो भलिया गरीबंकर तंटी छिपी सब लूट करनी होती से माने कोन से माने भदर लोक
0: बिसिया
2: आगे
0: ने आमो जाबुक ए भली रास्ता रे कुकुर उडा को मारी भानी मार देले भी मो मन से दुख आसीबो नै
1: अरे आजी मते मारी देले मारी दियंतु हजुर मारी दियंतु ले मते मो घर खंडी को मेहरबानी करी दियंतु ती दिन हला अमीना बेटी गछ मूले रे पड़ी छि चुले नाही चाळो नाही औषध नाही कि पति नाही बाबू मरी जीव बाबू मरी जीव आठ वर्षर पिलाटा मोर घोटे बोले अमानत

0: अमीना बेटी अमीना, ये बूढ़ा बापा टो पर इतने नाराज काहे की माँ? हाँ खाइबू आ, हे हे ने हे ने हे, रोटी का कबाब का मिठाई का वो खाली आंसू आंसू तू गुस्सा ही गलो खाइबू नी खाइबू नी ना ना से मो बेटी से कौन जीबो तू मैं कितने चीज़ आनी चाहिए बेटी तू आंसू बुनी ये बेटी अभी ना तोरी पर खाली तोरी पाई मुझाई तेरे से सायतान मोतिल पाकू सेठा गोठाए पाचे से मौजूद तो छड़ी नहीं ची मुझे तेरे तो जोक छड़ी आनी भी हलवा छड़ी आनी भी हलवा छड़ी आनी भी से सैतान वकील आसीच्ची मेला देखिबाकु ता संगरे तार से छोट झीटा भी आसीच्ची एटा बढ़िया सुजोग वकील दिनेश दास तू मोर जान लेइछो मो भी तोर जान लेइछिबि जान लेइछिबि तोर
1: धरणी धरणी
2: आज्ञा
1: मेला देखा आज एति थाउ चलो जीबा सुनो मु सब मैटर्स रेडी करिया रखी छी तमे जाई खाली इनकम टैक्स ऑफिसर के संगे देखा कर सब निष्पत्ति हे जीवो संगे 5000 टंका नै जाओ आ जे दरकार पड़े मते फोन रे कहबो
2: हो भाई ताले चलो जीबा ओ विदय ओले कोड़े
1: अरु अरु अरु अरे कोड़े गला छी धरणी एते बड़ भीड़ भितर ताक मु कोठ पाइबी देख ल देख ल अरे मा अरु अरु अरु अरु अरु
3: बाबू बाबू मु ए गोरु मारु किछ खोज खबर मिलु नहीं
4: मा छोंडो पिलाटा मेला रुजी कुआड़े चली गला खेड़ी अझल से पड़ी चला आज से कोठी जाई गछ मूल रखी रास्ता कोड़े आश्रय नहीं थी एक किए कहो विशिया
3: बाबू थाना बाबू पर कहते और माँ मोर निश्चय मिले
4: विशिया और मो वंशर शेष संतक से दिन कथा कौन मन पड़ूनी विशिया से दिन छिला अमावस्यार घन अंधकार राति चारिआड़े बर्षा बादल घन कटा साई साई पवन और जन्मदिन तमार जो अवस्था
3: सब मोर मन अच्छे बाबू ये घर को कथा मुझे नजाने जे
4: विषिया मोर गणे पृथ्वी में बंची कर अच्छे विषिया और पिलाटा धरणी किसी कह
2: सर व्यवसाय विषय
4: धरणी ना मत से व्यवसाय संक्रांत किसी कहना मोर एलाके मनर अवस्था जहा
2: किंतु सर इनकम टैक्स रिटर्न टा तो एई मास 15 तारीख पूर्व दिया जीवो सर सेति पई आउ जने लोक न हेले खाता पत्र काम
4: धरणी धरणी संतनर पिता तुमे धरणी मो अवस्था देखि त मनर ठीके दया होनी
2: किंतु सर ठीक समय रे रिटर्न दाखल न हेले अवस्था जे गुरुतर रहि जीवो
4: स्टॉप इट

0: बा ए छेड़ा तो चमत्कार नाचुचे ए तो लोके खुशी ही ताऊपुर को पैसा भी कुछ नहीं पैसा लोभ देखे या को तो सहजरे फसी हबो चमत्कार आज्ञा थर चेष्टा कर देखे ए जियो केड़ा छिलु
1: मते डकछ
0: हां मो कथा टी सुनिबु
1: कह
0: भारी मूल्यवान कथा तू मो कथा राजी हेले पैसा रे पुती ही जीवो
1: अच्छा
0: जीवो मो साथरे
1: कोडी के
0: अरे मो घर को असैठी सब कहबी चल चल मो साथरे
1: हो चल

0: अरे अरे अरे छाड़ो ना, छाड़ो छाड़ो। मो आखि को बुझी थल्ले भी मो ठीक जान सल्लिनी तमे अमर बाबू
1: अमीना
0: तमे भारी दुष्ट बुझिला। एत्ते पाठ पढ़िछ हेले मो परी उठे छोटो घर छियो पाखरे
1: किंतु गुनर तो तमे छोटो नहे। अच्छा अमीना, तमे सबबेले निजो केते छोटो काही मन करूछ? सब मनुष्य तो समान, बड़ सानर प्रभेद तो मनुष्य तयारी।
0: मो बाबा भी सबबेले एया कहंती
1: ताले आमे दुहे एकाठी हेबारे असुविधा कोठी
0: बाबू?
1: हाँ अमीना, एमती जनराति रे मो छाती रे मुह गुंजी तमे कहंत तमर बारबुला जीवनर कहानी।
0: बाबू
1: आकाशर छोट पक्षीटी भळी ओढ़नारे तमर जागी उठंता कंपन ओ बाहु दुइटे मो कंठ को चापी धरी कहंत केते असरंती गप।
0: बाबू
1: अमीना,
0: बाबू
1: अमीना,
0: बाबू
1: अमीना, अमीना
0: बाबू,
2: अमीना
0: बाबू,
2: बाबू के तो बाबू बेसरम लड़की। अरे ये तू कौन कलु
0: बाबू?
2: तमे भी केड़े निष्ठुर मणिस, ये फकीर लड़की को तमे जानुम को ठेली देला काहे की बाबू?
1: मोर दोष होई छी शमशेर मौसा, मते क्षमा कर दियो।
2: क्षमा? हां अरे शमशेर कोठे कुंता बदमाश पाजी शैतान
1: मौसा,
2: जीवन बहुत खुर कर छी क्षमा कर से छाड़ीनी
1: मौसा। मु सेति में प्रायश्चित करिया को प्रस्तुत अछि।
2: प्रायश्चित करियो, प्रायश्चित करियो तमे तमे अमीना को शादी करि परबो?
1: शादी?
2: हां शादी, शादी से हिम्मत जदि नाही तबे एते बड़ आगे लखा छी। जवाब दियो जवाब, अमीना को शादी करी तमे समाज को चली परबो? समाज रे
1: मते लिके भाबियो को समय थियो मौसा।
2: अरे मोहब्बत करियो आगर तमर भाबिवार उचित थिला ता यार फैसला तमको आज एहिने करबा को हबो।
1: बस मु तमको कथा दउ छी मौसा, मु अमीना को विवाह करबी।
2: तबे तबे अमीना को शादी करबो? सबास सबास अमर बाबू। अरे बेटी अमीना, तू जीती गलु रे बेटी, तू जीती गलु। ये बाबू अमीना को शादी करिबो, जीती गलु अमीना बेटी, जीती गलु।
3: धरणी अमर जे आसला नहीं जे केड़े दायित्वहीन पिला कहत देखी। जी असल आसामी सी जदि न आसे ये सब अरेंजमेंट करिवार किछ माने हुए ना।
4: आपण सिना अमर अमर होचन सर, ले अमर बाबूटी एडे सहज लोक नुहे।
3: नाय नाय धरणी नाय, तमे अमर को आज जे चिन्ह पालो ने सी सेवेला पिला नुहे। अरे अमर परा मोर निजर पिला।
0: पापा
3: हां कहमा,
0: जेते असुविधा थिले भी अमर बाबूंकर प्रथम एठिके आसीबा कोन उचित नथिला?
3: उचित जे मा हेले सरकारी चाकरी कले निजर स्वाधीनता चली जाए। धरणी तमे मो कार नै गलो, अमर को संगे धरि आसिबो जा।
4: ए हे तो सर हमरो आसले नि
1: मोर सामान्य डेरी हे गला सर, क्षमा करबे टूर रे चली जाइथिलि।
4: आज टूर रे न जाइथिले कोन चलले थांदा?
3: सतरे अमर आज अरुणार जन्मदिन रे
1: कोन करथांदी सर, गोटिए गां रे कलेरा एपिडेमिक 17 जन मलेनि, हेल्थ ऑफिसर को संगे से गां को जिबा को पडला।
3: ऑलराइट ऑलराइट, मा अरुणा तू अमर रो चर्चा कर। आसो धरणी से पाखरे कांगाळ भोजन आरंभ हलाणी, देखिबा सेडी केम चली जी।
4: चलन चलन सर चल।
0: अरे बसिबो ना एमते ठिया ठिया चल जीवो।
1: मते जदी विदाय दे पारन त तबे खूब भलो होंदा।
0: विदाय? संबोधना पूर्वरु विदाय? कोन हेछि तमर अमर बाबू?
1: नाही हे किछि नै।
0: बस उपहारटा कोन मते नदी फेरि नबो ना कोन मो?
1: अरे सॉरी सॉरी, हां उपहार दबा कथाटा एकदम भूली जाय छी, नियो सादर ग्रहण कर।
0: ए उपहार मो पई बड़ कथा नहे अमर बाबू, बहु आशा बहु कल्पना नहीं राती परे राती नसोई कटी दीची। तमरो टिके हस टिके कथा मो प्राण रे फुटी दीची असमारी फूल। आज मोर मन प्राण देह सब किछि चाहे तमरे सानिध्य।
1: संजत हो अरुणा, मन रख अमर ए पर्यंत विवाह हेनी।
0: अमर बाबू
3: नो नो, अमर आज मु तमको क्षमा दे परबिनी। एक तो मोर रो जन्मदिन रे तमे डेरी रे आसिलो, पुणी मो मा मन तुम दुख दईछ। छाड़ तमें बोधे जान ना अमर अरु आ तुमको नहीं मोर जो कल्पना एक मोर कहीं तुम बापा से एक कल्पना थिला
1: सर।
3: तुम कि कथ मु शुणी ना आज मु ठीक आसंता लग्न रे अर्थात

0: बासंती पाद चिपे चिपे सियाड़े कुआडे
1: मु मोर जुआडे गली कि जहां गली तोर कोन गला
0: मणि तमे जई पई नसर पसर आमे सेई कथा जानी
1: मु कुआडे जाऊची तू कोनटे जानिचु कहिलु देखी
0: कहिबी
1: कोउ नउ धमकउचु कोन बुझिलु अमर भाई मु त धमकण को डरिनी मा कोन जानिचु कहा
0: कन्या पर ओसे घरे नथिबा जानी एई मौका रे तू जाऊचु लेंबु आचार चोरे खाइबाकु
1: हौ तू काई किरे ठिया हे एकड चकर चाइथिलु कहिबी
0: कोउनु
1: तू खीर हांडी रु सर खाइबा को ओर उंडुथुलु
0: खाइली त खाइली भलो कली तोर कण गला
1: मु सेमिति आचार खाइले तोर कण गला
0: हो तोर मोर गुटे बुझामणा करिनेबा
1: की बुझामणा सुने
0: तू एठे कन्या पांको जगी के ठिया हेबु जदी से आसीबे ताहाले तू बड़ पाटी करी कुकुरुकु कहि दबो जे मु डेंकी पळेबी आ मु सर खाइ के आसीबा परे मु एठी जगीबी तू आचार खाइबा को जिबु हैला
1: हो तू ताहाले जा मु जगीची हेले तू झट आसीबू नहले कन्या पे आसी जिबे
0: मु हे गली आउ आई के किया सठी
2: बासंती किलो
1: हे नहीं हां हां नहीं
2: किलो तू एम भी चमकी पड़लू काई की
1: नहीं काई काई नहीं तो
2: तू ये रोसे घर द्वार में ठियाई छ कोन पे तोर कोन आज किछ पढा पड़ी
1: नहीं
2: की
1: नहीं नहीं हां अच्छी अच्छी
2: आउ ताले एठी काई ठियाई छु
1: नहीं ए ए कन्या पे
2: कोन कन्या पे
1: कन्या पाई ठीक को ठीक गले तो मत कहले रोसे घटा मेला अछि टिके ठिया आइ था मुए संगे संगे आसु छी
2: हाउ हाउ ठिया आइ था कन्या पा आइले तू जाई के पढा पढी करिबु हला
0: बसंती आलो बो आई थिला गलाणी
1: हां हां गलाणी बुझिलु अमर भाई मु अल्प के धरा पड़ी जाई थांती मनरु फांदी मिच्छ कहि देली
0: भल कलु मु रोसे घरे थाई सब सुनी तू जा शीघ्र आचार खाई के आसिबू मु एठी ठिया हे कन्यापा को अनै छी
1: हौ तू जगी था मु जाऊ छी
0: झट आसिबू त
1: हौ हौ
0: अरे मु भी गोटे बिले एही सांगे सांगे खीर सर खाई छी आ पेटे हीर पी की आसी छी तू चारी गोड़िया बिले हेले मु हेली दी गोड़िया बिले तू छोटो बिले हेले मु बड़ो बिले तू खीर पी दे पळे वाला बेले तत्ते जेमति के धरि परंती नाही मत्ते भी सेमति के धरि परंती नाही
3: कोन हैला तू दी गोड़िया बड़ो बिले सर खाउचु आ पेटे खीर पीउचु तत्ते केही धरि पर नाती
0: आ ओहो मो हातटा को छाड़ो कनियापा मो दिने मेथिया भूल करबिनी
3: ना तत्ते मु आज जम्मा छाड़िबिनी तू सब दिने खीर हांडी रु सर खाउचु दूध पीउचु आ सेटा के बासंती किला किला तू से रोसे घर भीतर पसे कोन करथुलु आय आय पाटे कोन पुनेचु
1: ना ना किछि नै
3: सेई किछि नै ता पुनी कोन
0: लेंबू आचार
3: तोम दी ताकु आ पारी हबो नै तोम दी को कथा आजि तोम बापा बों का अगर निश्चय कोई भी एई कानी रे पड़िला गोंठी
1: ए कन्यापा ए इथरे हमको छाड़ी दियो आमे फुल दिनने करिबुनी
3: इमिति भूल करिबो नै बोली केते थर कहिलणी कहिलो
0: नै नै नै नै आमे आखी छोंजो इमिति भूल आ जम्मा करिबुनी
4: पाठ पढा छाड़ी तमे दीटा एती कोन करूछो
0: नै बापा नै
4: नै कोन बासंती तू एती कोन करतुलु
1: नै नै हां नै
4: कोन नै ए कन्यापा ये अमर आ बासंती एठी कोन करथले निश्चय किछ दुष्टम करथले
2: किरे तमे दिना तळकु मुहापति ठिया लगाई कि जा पढिबो जा
4: पौडा समरे आ दिने रोसे घर को आसीवार देखिले बाड़े के हाड़ गोड़ चुना कर देबी जाउ छ ना पुनी देखि होइले
0: जाउ छ
1: बाबा
5: अमर सेवती अरे तमे दिटा ए रोसे घर आगरे एमते नंगर पगर काई होउछ कौन किछि
0: नाय समर भाई किछि न
5: निश्चय किछि अछि ना सेवती कौन किलो
6: नाय किछि नै ए बासंती
5: बासंती बासंती के
6: रोसे घर भीतर को जाई छी
5: तार रोसे घर भीतर की काम
0: काई की तोर कोन गला से बेलो पोडिया को जाई छी
5: पाचिला बेलोटा पोडिबो काई की
0: पाचिला बेलो पोडी के शरबत कले भारी मीठा नागे
6: हां समर भाई पाचिला बेलो पोडी खाइले ना भारी स्वादिया नागिवो
5: मते शरबत दबो ना
0: आमे हमर तीन जन बीबू मु सेवती आ बासंती तते काई दबू
5: मते दबनी त

0: आम परंपरा आम कला संस्कृति आकाशवाणी ही रखिचे साइति।
1: बन्या हेउ बा महाबात्या सबु परिस्थिति रे
2: गारु सहर जाए सबु स्थान रे
1: आबाल वृद्ध बलिता समस्तंक पाई
2: जुआंग ओ सांतालंक ठारु बंडा एवं कोयांक जाए सबुरी भाषारे
1: केवल आकाशवाणी
3: आकाशवाणी कटक आमर स्वास्थ्य आज थे शुणु वृक्ष अक्षमता ए संपर्क कहते डाक्तर विवेकानंद कर
4: मनुष्य पंजरार दुईपटे सीम मंजी पी दुईट वृक्ष थाए यह प्रधान कम शरीर दूषित पदार्थ निष्कासन लवण मात्रा और जलीय अंशर परिमाण को ठिक रखा एवं एरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन द्वारा शरीर में हेमोग्लोबिन परिमाण को ठिक रखा यह सहित वृक्ष डी मेटाबॉलिज्म द्वारा शरीर हाड़गुड़ी को मध्य ठिक रखी था यह दुई भाग विभक्त अस्थायी वृक्ष कम स्थायी वृक्ष अकामी होबा आम देश में अस्थायी वृक्ष अकामी होबार प्रधान कारण

विश्व के सबसे बड़े जन आंदोलन से जुड़ने के लिए स्कैन करें या विजिट करें www.swachhatahi seva.gov.in।

हा माधवयोर जयंती जमुना कुळे रह केळय। भगवान कृष्ण विश्वर मंगल करंतु बोलान रे कबार।

띵거띠 내띠민띠하면 민띠하죠 서봤죠 박어만이 띠 भगवान कृष्ण हेले स्वयं भगवान तो कई मारी पारे नहीं मु प्रतिज्ञा कर पुत्र हंतार प्रतिशोध नेबी ना गोटे जी काम करू तेल पुत्र हंतार प्रतिशोध नहीं पार जा बड़ भाई बलराम को शपथ करू धर्मराज युधिष्ठिर को शपथ करू भीम अर्जुन शपथ करू समस्त शपथ करें तू सब समय सप्तरथी एकत्रित कृष्ण।